ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है, 102.6 MHz पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 21वीं तिथि। तदनुसार 12 सितंबर 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। 6:02 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम सुप्रभात। 7:00 हिंदी में समाचार। 7:02 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 9:00 हिंदी में समाचार। 9:02 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने। 10:00 अंग्रेजी में समाचार और 10:02 पर लेकर आएंगे वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा।

0: वर्जिन
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग।
1: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

यह आकाशवाणी का रेनबो चैनल है। सुबह के 6 बज चुके हैं। प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले 11 प्रमुख देश एक साथ आएंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन से इतर आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री लेमिंग हंग के साथ बैठक में शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मुलाकात में दोनों नेताओं ने बहुध्रुवीय विश्व के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित बहुपक्षीय वैश्विक संगठनों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9:10 तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU के द्वितीय चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। इसमें योजना के क्रियान्वयन को और गति मिलेगी तथा शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। खेल समाचारों में, भारत ने पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी में मलेशिया को हराकर फाइनल में

दिल्ली एनसीआर के आबो हवा में तैरती ध्वनि तरंगे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज और देश भर में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप हमें सुन रहे हैं। डीटीएच के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचते हैं और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू कहीं भी कभी भी आप मोबाइल ऐप के जरिए हमें सुन सकते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ आइए अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच और एक नई ऊर्जा के साथ करते हैं। हर सुबह हमें जीवन का एक नया अवसर देती है। बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो आज हमारे हाथ में है। कल की गलतियों से सीखिए लेकिन उन्हें अपने आज पर हावी मत होने दीजिए। कहा जाता है कि सफलता ना एक ही दिन में नहीं मिलती, इसलिए हर दिन की गई छोटी छोटी मेहनत हमें सफलता के करीब जरूर ले आती है। इसलिए अपने सपनों को बड़ा रखिए लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने से बिल्कुल मत डरिए। आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो। शो है सुप्रभात और मैं हूं आपके साथ आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त दिल्ली दसौड़ा रंगीला मुंडा अजय गोपाल। बने रहिए, बैठे रहिए, टिके रहिए, चिपके रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द स्टेशन ऑफ द नेशन। सुप्रभात एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन।

102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं शो कॉल सुप्रभात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक सुबह की एक परफेक्ट शुरुआत। और कहीं ना कहीं जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे आसपास होती रहती है दोस्तों, और हमें लगता है कि इज इट रियली राइट टाइम टू स्टार्ट, एक सवाल है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि क्या आप अपने जीवन को बदलने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अक्सर हम सोचते हैं ना कि जब परिस्थितियां बेहतर होंगी तब हम अपने सपने पूरे करेंगे, जब समय मिलेगा तब मेहनत करेंगे, जब आत्मविश्वास आएगा तब शुरुआत करेंगे, एंड सो ऑन। लेकिन सच तो ये है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, हमें अपने छोटे छोटे प्रयासों से ही सही समय बनाना पड़ता है। एक विद्यार्थी का रोज थोड़ा पढ़ना, एक खिलाड़ी का रोज थोड़ा अभ्यास करना, या किसी व्यक्ति का हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना, ये छोटी छोटी आदतें ही एक दिन बड़ी सफलता का कारण बनती है। इसलिए आज किसी बड़े बदलाव का इंतजार मत कीजिए, बस एक छोटा सा कदम उठाइए, एक अच्छा काम कीजिए, किसी की मदद कीजिए, अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा सा समय निकालिए। याद रखिए, समुद्र की विशाल लहरें भी ना छोटी छोटी बूंदों से बनती हैं। आपकी मेहनत भले ही आज छोटी दिखाई दे, लेकिन लगातार मेहनत करने के साथ वो आपके भविष्य को बदल सकती है। तो इस सुबह खुद पर विश्वास रखिए, सकारात्मक सोचिए और अपने दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ कीजिए। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त अजय गोपाल, सेइंग अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग अप नेक्स्ट ओनली ऑन द स्टेशन ऑफ द नेशन

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 6:17 यानी शनिवार सुबह के 6:15 हो चुके हैं दोस्तों। और जब हम अपने जीवन में छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे हम अपनी ताकत का एहसास होने लगता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता की राह पर सबसे जरूरी चीज केवल मेहनत नहीं होती है, बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहने का हौसला भी होता है। वो पेशेंस भी चाहिए जो कई बार आप को तोड़ने की कोशिश करते हैं हालात, तो उन हालातों से आगे बढ़ने के लिए जो सब्र चाहिए वो भी जरूरी है दोस्तों। कभी कभी हमें लगता है ना कि हमारी कोशिशों का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। हम मेहनत कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मंजिल दूर दिखाई देती है। और ऐसे समय में रुकने के बजाय खुद से कहिए कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है, बल्कि मैं खुद को लगातार तैयार कर रहा हूं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बीज होता है, जब बीज मिट्टी के अंदर होता है ना, तो बाहर से कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर ही अंदर एक पूरी प्रक्रिया जो है वो चल रही होती है। और फिर धीरे धीरे वो जब फूटता है, अंकुर जमीन से बाहर आता है, तो दुनिया दिखने लगती है।

लेकिन तब भी छोटा होता है और वो लगातार प्रयास धीरे धीरे उसे एक वट वृक्ष में, एक पेड़ में कन्वर्ट कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारी मेहनत का परिणाम भी हमें हमेशा तुरंत नहीं दिखाई देता, इसलिए धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, अपने प्रयासों पर विश्वास रखिए और दूसरों की सफलता देखकर अपने रास्ते पर संदेह मत कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर किसी का समय अलग होता है। आज का दिन आपको एक नई शुरुआत का अवसर दे रहा है, इस अवसर को पहचानिए और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते जाइए। लेकिन याद रखिए, मंजिल तक पहुंचने वाले लोग हमेशा सबसे तेज नहीं होते, लेकिन वे अक्सर वही होते हैं जो रुकते नहीं हैं। 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात। तो मुस्कुराइए, विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को मोहब्बत भरी एक और सुबह और उम्मीद भरा एक और दिन मुबारक हो। मैं हूं आपके साथ दिल्ली दसौड़ा रंगीला मुंडा अजय गोपाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं शो कॉल सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ दिल्ली का सोना रंगीला मुंडा जी गोपाल। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों खुद पर यकीन की। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बट ट्रस्ट मी, अगर ये भी आप सोचने लगे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, इजंट इट। आगे बढ़ते रहने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है खुद पर विश्वास। कई बार दुनिया हम पर विश्वास करने से पहले हमें परखने लगती है। लोग हमारी कमियां हमें गिनाने लगते हैं, हमारी गलतियां हमें याद दिलाते हैं, और कभी कभी हमें यह भी बताते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, आपकी पहचान दूसरों की राय से नहीं बल्कि आपके अपने एफर्ट्स अपने कर्मों से बनती है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसे खुद पर विश्वास करना पड़ता है। जब तक कोई साथ देगा तब तक हो सकता है देर हो जाए, इसलिए आपको खुद अपने लिए अपने लक्ष्य के साथ खड़े रहना होगा। आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं कि हमें हर चीज आती है। आत्मविश्वास का अर्थ है कि विश्वास रखना कि हम सीख सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। तो आज सुबह अपने आप से कहिए, मैं अपनी कमियों से बड़ा हूं, मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूं और रोज कल से थोड़ा बेहतर बन सकता हूं। छोटी छोटी कोशिशों को कभी मत कोशिशें जो है उन्हें कभी भी कम मत समझिए। एक कदम आज, दूसरा कदम कल, यही कदम मिलकर आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। और हाँ, रास्ते में दूसरों की सफलता देखकर निराश मत होना, किसी की मंजिल देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझना। हर फूल खिलने का मौसम अलग होता है, इसलिए विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए और अंदर की अच्छाई को कभी मत खोइए। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि अध्याय लिखे जाने बाकी हैं। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात, दिल्ली दे सोने रंगीले मुंडे आरजे गोपाल के साथ। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन।

0: एफएम रेनबो पर समय हुआ है 6:30। आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पण।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुनते चले आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंध में, दूसरे स्कंध में महाराज परीक्षित जी के प्रश्नों को जो उन्होंने सुखदेव जी से पूछे, और उसमें बहुत ही बड़ा, बहुत ही मुख्य प्रश्न था कि जीव का तो देह से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि वो भगवान का अंश है और भगवान तो भौतिक देह से युक्त होते नहीं हैं, उनके देह सच्चिदानंदमय है। तो ये जो जीव है, इसका देह से संबंध कैसे बन गया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। जीव भगवान का चिदगण है, तो ये जो चिदगण है, जो चेतन है, जो कभी नहीं मरता, जो सदा सर्वदा विद्यमान रहता है, जो चेतना से भरा हुआ है, ये जो जीव है, ये देह में घूमता है। देह में जब घूमता है तो देह को ही मैं समझ लेता है और देह से संबंधित लोगों को मेरा समझ ही लेता है, तो ये कैसे होता है, ये कृपया बताएं। तो इसका उत्तर दिया है 9वें अध्याय में, जहां पर सुखदेव जी कह रहे हैं, आत्म माया मृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्न दृष्टो रिवांजसा बहुरूप इवाभाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते यरिहि वाव महिमनि स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गत सम्मोह त्यक्तवो दास्ते तदो भयम् आत्म तत्व विशुद्ध्यर्थम् यदा भगवान ऋतम् ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम व्यलीक व्रताद्रितः। तो इन 4 श्लोकों में उत्तर दिया है महाराज परीक्षित जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देह आदि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। विविध रूप वाली माया के कारण ये विविध रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब ये मैं हूं, ये मेरा है, ऐसा मानने लगता है। किंतु जब ये गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह को उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, भगवान का भजन करने लगता है, भगवान का हो जाता है, तब ये मैं और मेरा का भाव छूट जाता है और वो पूर्ण रूपेण उदासीन गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया है। तो हम तो ये जानते हैं कि ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच संवाद हो रहा था, जिसे सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं, और परीक्षित जी जो सुना रहे हैं वो नैमिषारण्य में सूत जी सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। तो सुखदेव जी ने जो कहा है कि स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उससे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, ये तो हम सबने महसूस किया है कि नहीं? भगवान को हमने महसूस नहीं किया है, पर सपने तो हर एक ने देखे हैं, ना भी चाहें तो भी स्वप्न दिखते ही हैं, है ना? तो जब स्वप्न में हम कोई वस्तु देखते हैं तो हम सुबह कई बार डर जाते हैं, कई बार प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि तो सपना था, इसकी कोई असलियत नहीं है, ये आया और ये चला गया। ऐसे ही जो जीव है, वस्तुतः देखा जाए तो सच्चिदानंदमय है, उसका देह आदि के संग संबंध हो ही नहीं सकता है, तो भी मगर होता है, ये भी हम देखते हैं। तो सुखदेव जी वही कह रहे हैं कि जीव सच में ही स्वरूपतः सच्चिदानंदमय है, परंतु उसके साथ एक समस्या है कि वो अनादिकाल से
कृष्ण बहिर्मुख है, उसने कृष्ण भजन नहीं किया, उसने कृष्ण भक्तों का संग नहीं किया, उसने श्री कृष्ण का नाम गान नहीं किया, श्री कृष्ण को पाने की उसके अंदर कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हुई, वो जान ही नहीं पाया कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, उसे पता ही नहीं चला। तो इसीलिए चूंकि वो बहिर्मुख है, भगवान से विमुख है, तो श्री कृष्ण की ही जो बहिरंगा शक्ति है माया, बहिरंगा शक्ति है, बाहर की शक्ति है, पर भगवान से ही प्रकटित है। ये माया ऐसी है जो भगवान के सामने जाने में लज्जित होती है, हमने सुना था पिछली बार, लेकिन है बहिरंगा शक्ति, उन्हीं से प्रकट है। तो ये माया दंड देती है जीव को कि तुम भगवान से विमुख हो तो लो, तुम्हें इसका दंड प्रदान किया जाता है। क्या दंड? तुम्हें अनंत देहों में घुमाया जाएगा। देह होगा तो घर भी होगा, जब देह होगी और घर भी, तो फिर लगेगा कि ये मेरी देह है, यही मैं हूं और ये मेरा घर है। देह मैं हूं, मैं बीमार हूं, मुझे ये हो गया, और ये मेरा घर है। सुंदर घर बनाया, बड़ा सा, अच्छा, या अच्छा बनाऊं, और भी अच्छा, इससे भी अच्छा, उससे भी अच्छा और उससे भी अच्छा, पर सब छूट जाना है यहीं पर। लेकिन आसक्ति वहां जम जाएगी। बहुतों को देखा है हमने जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से घर बनाया, वो घर की ईंटों में ऐसे आसक्त हो जाते हैं कि वो उस चार दीवारी को छोड़कर बाहर निकलना नहीं चाहते, और अगर निकल भी गए तो सतत उन्हें चिंता सताती रहती है कि घर ठीक है ना, घर ठीक है ना, घर में जरा भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो देह और गेह, गेह कहते हैं घर को, इसमें इतनी ममता हो जाती है, और घर में रहने वालों से ममता हो जाती है, अपने परिवार से ममता हो जाती है, बाल बच्चों से ममता हो जाती है, पत्नी से ममता हो जाती है, पति से ममता हो जाती है। तो यही दंड है, ये जो ममता है ये दंड है जो माया ने जीव को दिया है। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख से कारणे माया तारे देह संसार दुख। तो श्री कृष्ण को भूल गया जीव, अनादिकाल से भूला हुआ है, और इसीलिए माया उसको दंड देती है संसार रूपी दुख दे करके। तो संसार में हमेशा सुख तो मिलता नहीं है, भगवान का भजन नहीं किया और संसार में हम डूबे रहे तो हम देखेंगे दुख ही दुख मिलता है, सुख कहाँ है संसार में? सुख तो है ही नहीं। मकान बनाया तो मकान धंस भी जाते हैं, मकान भर भरा के गिर भी जाते हैं, है ना? उस मकान में कितने ही जानवर घर बना लेते हैं, तब तनाव रहता है, अरे इनका क्या करें, उसका क्या करें, ये क्या करें, वो क्या करें। तो मकान

दुख का कारण बन जाता है। बच्चे पैदा किए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आपकी बात ही नहीं सुनते, वो अपनी भलाई की बात नहीं मानते। बच्चे गाली देते हैं, बच्चे हिंसक हो जाते हैं, बच्चों को रोग हो जाता है, कितना दुख है। पत्नी पति आए हमारे जीवन में, हमने सोचा हमें सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलता नहीं है, कष्ट होता है, कलह होती है, क्लेश मिलते हैं, कितना दुख है। इसके साथ और भी बहुत सारे दुख हैं जो जुड़े रहते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में जैसे कि कहा गया, भयम द्वित्य अभिनिवेश तः स्यादि शाद पेतस्य, यानी कि ये जो भय उत्पन्न हुआ, ये जो डर उत्पन्न हुआ हृदय में, इस शरीर का क्या होगा, अरे इसमें तो रोग लग गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे उसको ये हो गया, अरे इसको ये हो गया। तो ये जो भय उत्पन्न हुआ वो हुआ द्वितीय अभिनिवेश के कारण। द्वितीय अभिनिवेश क्या, कि ये शरीर मैं हूं, जबकि शरीर में हम आए, ये माया ने दंड दिया, क्योंकि शरीर में आकर के अगर भजन किया तो ये माया का भी अनुग्रह है, भगवान का भी अनुग्रह है, कृपा है, किसी महत की भी कृपा है। लेकिन अगर भगवान के भजन से अलग हो गए, भगवान का भजन समझ नहीं आया, उस तरफ हमारी रुचि नहीं बनी, तो फिर सदा भयभीत रहेंगे, हर चीज को लेकर भयभीत रहेंगे, डरे रहेंगे। तो जीव सच्चिदानंदमय वस्तु है, मगर है अणु, साइज उसका अणु है, मिनिस्क्यूल। भगवान के साथ उसका विशेष पार्थक्य है, विशेष भेद है। भेद क्या है, बहुत बड़ा भेद है। श्री भगवान है नियंत्रक और जीव है नियंत्रित, ये बहुत बड़ा अंतर है। लोग कहते हैं कि भाई तुम वही हो, तुम ही भगवान हो, खुद को पहचानो, ऐसा कहते हैं ना लोग। लेकिन हम खुद को कितना भी पहचान लें तो भी हम देखते हैं कि हम तो नियंत्रित हैं, प्रकृति के नियमों की अवहेलना नहीं कर सकते, हमें कष्ट ही कष्ट मिलता है, हम उन कष्टों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, हमें तो भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। जबकि भगवान नियंत्रक हैं, सब कुछ उन्हीं से है, वो नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण नहीं है तो अनंत भगवत स्वरूप भी नहीं है, है ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो माया क्या है, माया तो भगवान की ही बहिरंगा शक्ति है। अघटन घटन पटियसी, अघटन घटन पटियसी, वो जो हो नहीं सकता उसको भी घटा देने में निपुण है माया। जीव कृष्ण संबंध विहीन अगर होता है, जो कि रहता ही है, जब तक कि वो भगवान का भजन नहीं करता वो संबंध युक्त नहीं हो पाता। तो जो जीव कृष्ण संबंध विहीन है, माया उसको अपने अधीन रखती है और अपने द्वारा बनाए गए देह में, घर में उसका संबंध पैदा कर देती है, मैं और मेरा का, मैं और मेरा, मैं और मेरा। और बस ये संबंध जब वो पैदा करती है तो अनेक प्रकार के दुखों को भी वो भोग कराती है। माया सिर्फ उन्हीं को अपने अधीन रखती है जो जीव कृष्ण संबंध विहीन है, ये याद रखना होगा। जो कृष्ण संबंध युक्त हैं, श्री कृष्ण की तरफ मुड़े हुए हैं, श्री कृष्ण में ही जिनके मन बुद्धि चेतना अहंकार है, श्री कृष्ण के सुख के लिए जो अपने आप को तैयार किए रहते हैं, श्री कृष्ण का सुख ही उनके जीवन का हेतु है, उद्देश्य है, श्री कृष्ण पर ही भरोसा है, सब कुछ श्री कृष्ण को लेकर है, उनकी गृहस्थी भी कृष्ण को लेकर है, तो फिर माया उन्हें कभी अपने अधीन नहीं रखती है, है ना। तो इतना जो दुख हम भोगते हैं, शरीर का हो, मन का हो, प्रकृति भी दुख देती है। अभी आपने सुना ही, बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कितना कुछ तो हो ही रहा है। तो ये सब माया द्वारा सृजित है, माया करती है। माया, ये दुख भोग कृष्ण बहिर्मुखता का ही दंड है। अगर सब श्री कृष्ण के उन

0: होते, भगवान से अपना संबंध बनाए रखते, उनकी सेवा में लगे रहते, मान लीजिए दुनिया के सब लोग ऐसे हो ही जाते, सच्चा संबंध बनाते, दिखावे का नहीं, तो हृदय में किसी को लेकर द्वेष ही नहीं आता। सब जगह यही बात होती, जैसी हरि इच्छा जैसी हरि इच्छा, किसी से कष्ट नहीं होता। क्योंकि हम तो सुनते हैं और ये अनुभव भी किया है कि अगर हम किसी से द्वेष करेंगे तो फिर वही द्वेष कई गुना होकर हमारे पास आएगा। हम किसी से प्रेम करेंगे तो वही प्रेम कई गुना होकर हमारे पास आएगा। जो हम लेना चाहते हैं किसी से, वो हमें देना होगा पहले, फिर हमें प्राप्त होगा, है ना। तो जब कोई भगवान का भजन करता है तो समस्त वसुधा को, समस्त पृथ्वी को और पृथ्वी के लोगों को अपना ही मानता है, तब उसके मन में हिंसा, द्वेष, जलन ये सब नहीं उठते। तो ये बात समझनी होगी। तो ये जो हिंसा, द्वेष, जलन ये सब जो हृदय में उठते हैं, ये भी क्लेश प्रद है और ये सब कुछ होता है अविद्या के कारण। अविद्या शुरुआत अविद्या की होती है, जब हम शरीर को मैं मानते हैं वहां से अविद्या की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद तो ये अविद्या चलती रहती है बहुत दूर तक, चलती ही रहती है अनंत जन्मों तक। तो बहुत ही सुंदर चर्चा हो रही है जिसे जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278899। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा, और हम चर्चा कर रहे हैं कि महाराज परीक्षित जी को सुखदेव गोस्वामी जी इस बात का उत्तर दे रहे हैं कि जीव जो कि सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है, वो भला देह से कैसे संबंध रखता है, उसे देह में क्यों आना पड़ता है। तो इसका उत्तर हमने सुना कि जीव सच्चिदानंदमय वस्तु है, लेकिन तो भी अणु है, और भगवान के साथ उसका विशेष पार्थक्य यही है कि भगवान नियंता है और जीव नियम में है, यानी नियंत्रित है, है ना। तो हमने सुना जो जीव कृष्ण संबंध विहीन है, भगवान का भजन नहीं करता, माया उसको अपने अधीन रखती है और उसके लिए देह गेह का निर्माण कर देती है और उसमें मैं और मेरा का संबंध पैदा करके उसे अनेक प्रकार का दुख भोग कराती है, और ये जो दुख है यही कृष्ण बहिर्मुखता का दंड है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करे किसी के निकट, तो जिस तरह से राजपुरुष गण अनेक प्रकार से अपराधी का दंड विधान करते हैं, अनेक प्रकार से दंड देते हैं राजपुरुष लोग, राजा लोग, उसी प्रकार से श्री कृष्ण बहिर्मुख महा अपराधी जीव वो श्री कृष्ण की माया द्वारा अनेक प्रकार के दंड भोगता फिरता है। महाराज परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से ये पूछा था कि जीव का देह आदि संबंध का कोई कारण है या यूं ही जीव को देह मिलती है क्योंकि मिलनी होती है। सुखदेव जी ने यही उत्तर दिया है कि अनादि बहिर्मुखता ही देह संबंध का कारण है। श्री गोविंद चरणारविंद का अगर कोई भजन करे और उसकी ये बहिर्मुखता दूर चली जाए, तभी जीव अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। और स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का दास है बस, इसके अलावा वो किसी का दास नहीं है, किसी का दास नहीं है। तो कोई कहे कि नहीं भगवान का भजन मत करो,

हमारी सेवा करो, उसी से भगवान मिल जाएंगे, तो ये बहुत गलत बात है। हुँ? अगर कोई ये कहे कि नहीं, तुम भगवान का भजन पहले करो, भगवान की सेवा पहले करो, समय बचे तो फिर हमारी सेवा कर लेना, कोई बात नहीं है, तो ये ठीक बात है, यही ठीक बात है। और जो ये ऐसा कहे उसे भी भगवान का भजन करना चाहिए, है ना, क्योंकि जीव का स्वरूप धर्म यही है। तो जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति सपना देखता है और सपने के आवेश में, स्वप्न में जो उसे देह दिखती है उसे ही मैं समझता है और अपनी देह की बात भूल जाता है कि मैं लड़का हूं कि लड़की हूं कि क्या हूं। जब नींद खुलती है तब देह के साथ संबंध छोड़कर अपनी देह के साथ उसे संबंध प्राप्त होता है कि हाँ, अरे मैं तो ये हूं, फला फला हूं, इसका पिता हूं, उसकी माता हूं, बस यही है। हुँ? वो जो मैंने देखा था वो तो बस सपना था। इसी प्रकार जो बहिर्मुख व्यक्ति है वो भी माया रचित देह को ही मैं बोलता है और अपने स्वरूप को भूल जाता है कि मैं कृष्ण दास हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं दासानुदास हूं। उसके मन में ये बात भूले से भी नहीं आती, वो सोच भी नहीं सकता है। हुँ? क्योंकि अनंत जन्मों से वो देह को ही मैं मान के बैठा है, देह को। लेकिन हम देखते हैं कि देह तो पड़ी रह जाती है, तो फिर वो चलती क्यों नहीं, उठती क्यों नहीं, बैठती क्यों नहीं, काम क्यों नहीं करती? क्योंकि उसमें से जो असली मैं था वो चला गया, वो चला गया, आत्मा चली गई। कोई कहे मैंने आत्मा को देखा है, तो ये क्या बात हो गई? आत्मा को देखना बहुत मुश्किल है, वो तो बाल यानी ये जो केश है उसका अग्रभाग है, उसका 10,000 टुकड़े कोई कर दे तब वो जो 10,000वां भाग है उसके बराबर ही आत्मा का परिमाण है, माप है। तो जैसे ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान का भजन करता है, तो उसकी बहिर्मुखता दूर हो जाती है और माया रचित देह आदि के साथ संबंध विलुप्त हो जाता है और वो अपने निज स्वरूप का संबंध प्राप्त करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि जो व्यक्ति सपना देख रहा था वो जैसे ही जागता है तो वो सपने में देखी गई देह को, जिसे वो मैं समझ रहा था, वो भूल जाता है और जो उसकी देह है जिसमें कि वो है उसे याद करता है, अरे ये तो मैं हूं। ऐसे ही कोई भगवान का भजन करता है तो उसके अंदर भाव आ जाता है, मैं आपकी सेविका हूं या सेवक हूं, मैं नित्य दास हूं। और तब माया में जो उसका आवेश था या माया रचित देह के साथ जो उसका आवेश होता है वो धीरे धीरे धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। तो सही बात यह है कि श्री गोविंद के चरण कमलों का भजन करने के अलावा इस बहिर्मुखता से छुटकारा पाने का अन्य कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो श्रुतियों ने भी इस बात की घोषणा की है, शास्त्रों में ये बात आई है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। आपको जानकर ही, आपको पाकर ही कोई मृत्यु पथ से उबर सकता है। जैसे जीव का ये ज्ञान होता है, उसके अंदर ये भाव आता है कि श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं, तभी वो मृत्यु रूपी संसार को पार कर सकता है, वरना वो कभी भी संसार सागर से पार नहीं जा सकता, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इसीलिए भगवान ने गीता में ये घोषणा भी की, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। माया से पार जाना यानी भव सागर से पार जाना यानी संसार सागर से पार जाना एक ही है, पर पार वही हो सकता है, छुटकारा उसे ही मिलेगा इन अनंत देहों में आवागमन से, जो भगवान की शरणागति लेगा, है ना। और ये कहा भी गया है श्रीमद् भागवत में, प्रीतिर्ना यावन मई वासुदेव ना मुच्यते देह योगेन तावत। भगवान ने कहा है श्रीमद् भागवतम में कि जब तक मुझसे प्रेम नहीं हो जाएगा तब तक इस देह में आवागमन से छुटकारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भगवान तो चाहते ही हैं कि सब सुखी रहें, लेकिन अगर कोई उनके उन्मुख ही नहीं है, उनकी तरफ जाता ही नहीं है, तो वो कैसे सुख दे पाएंगे। हमने तो वहां किवाड़ लगा दिया, कपाट लगा दिया ना अपने मन में, हमारे मन में तो माइक चीजें बसी हुई हैं, तो भगवान चाहकर भी नहीं जा पाएंगे,
चाहकर भी अपने प्रति प्रेम नहीं दे पाएंगे। प्रेम तो वो हर समय बरसाते रहते हैं, लेकिन हमारे पास पात्र ही नहीं है जो प्रेम को धारण कर सके। इसीलिए भजन की आवश्यकता है। इसीलिए तो सुखदेव गोस्वामी जी जो कह रहे हैं, यरहि भाव महिमनि स्वे, इन श्लोकों में कहा कि जो माया बंधन मुक्त है उस जीव की क्या अवस्था होती है। वो जीव भगवान के संबंध को लेकर के जीता है, उसे सुख दुख कुछ नहीं लुभाते, कोई प्रभावित नहीं कर पाता है, है ना। तो देखिए, भगवान और जीव दोनों ही सच्चिदानंदमय हैं, पर हैं पृथक। जीव अणु है और परमेश्वर विभू हैं, भगवान विभू हैं। और जीव का ये जो अणुत्व है वो माया के द्वारा उसे नहीं दिया गया है, वो तो स्वतः सिद्ध है। जीव का अणुत्व स्वतः सिद्ध है, वो हमेशा से अणु था, है और रहेगा। तो माया इस अणु जीव को वश में कर लेती है, लेकिन माया मुक्त जीव को वश में नहीं करती है। जीव तभी माया मुक्त हो पाता है जब वो विभू चैतन्य यानी श्री भगवान के साथ संबंध स्थापित करे, तब माया उसे पराजित नहीं कर पाती है। तो परमेश्वर जीव को अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता। जीव स्वरूपतः अणु है तो वो माया द्वारा वश में हो जाता है, लेकिन जब वो भगवान की तरफ मुड़ता है तो वो माया से पार हो जाता है। अगर वो अणु नहीं होता तो माया उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती थी। हम अणु हैं, अणु जीव, अणु चैतन्य जीव, ये याद रखना होगा। इसलिए श्री गोविंद के चरणों का सहारा लेना ही होगा, लेना ही होगा। और जब कोई गोविंद के चरणों का सहारा ले लेता है तो माया का असर नहीं रहता, तब स्वरूपतः वो अणु जीव भी महत हो जाता है। महत, गीता में भगवान ने यही कहा है कि तत्व ज्ञान प्राप्त करके जीव मेरा साधर्म लाभ करता है। यानी जैसे मुझ पर माया की नहीं चलती, उसी प्रकार से उस जीव पर भी माया की नहीं चलती। ये बहुत बड़ी बात है। अणु जीव भी मायातीत हो जाता है भगवत कृपा से। तो देखिए, जगत की प्रत्येक वस्तु ही काल के द्वारा समाप्त कर दी जाती है, और माया कृत प्रपंच के साथ ही प्रत्येक वस्तु का संबंध है, मगर भगवान का उस प्रकार से नहीं है। वो काल और माया दोनों से ही अतीत हैं। अणु चैतन्य जीव अनादिकाल से इस काल और माया के अधिकार में आकर मोह के कारण नाना प्रकार के दुख को भोगता है, और फिर जब वो इस अधिकार से छूट पाता है भजन के द्वारा, तो उसके अंदर मोह या दुख का लेश भी नहीं रहता। जिस प्रकार से अगर कोई बच्चा बड़ा होता है ना, तो फिर खिलौने में उसकी ममता नहीं रहती, वो उदासीन हो जाता है। इसी प्रकार जीव भी जब जगन्नाथ भगवान के चरण को प्राप्त कर लेता है तो माया के जगत में उसकी ममता नहीं रहती है। तब जागतिक वस्तुओं के प्रति ममता की मोह की रस्सी कट जाती है और वो उदासीन हो जाता है, और वो माया की उपेक्षा करता है या माया की वस्तुओं की उपेक्षा करता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो जीव भाव सागर में जिन चीजों से खेलता है वो है माइक वस्तुएं, और माया मुक्त जीव माया के अतीत सच्चिदानंदमय धाम में मैं कृष्ण दास हूं इस अभिमान को लेकर श्री कृष्ण की सेवा का खेल खेलता है। दोनों ही खेलते हैं, लेकिन बद्ध माया लेकर खेलता है और मुक्त कृष्ण लेकर खेलता है, यही पार्थक्य है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा हुई आज हमारी, जिसका वर्णन हमने सुना, और यही चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण। इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

लीजिए पेश अब तक के मुख्य समाचार। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मिट आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले 11 प्रमुख देश एक साथ आएंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन से इतर आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मुलाकात में दोनों नेताओं ने बहुध्रुवीय विश्व के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित बहुपक्षीय वैश्विक संगठनों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU के द्वितीय चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। इससे योजना के क्रियान्वयन को और गति मिलेगी तथा शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। खेल समाचार में भारत ने पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी में मलेशिया को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। और महिला एशिया कप क्रिकेट में कल दुबई में भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

सबको पता है कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है। ज़रा एक पेन कॉपी उठाइए और लिखिए, है जिंदगी तो है अपने। अब इस प्यारी सी लाइन को आप उल्टा पढ़ें या सीधा पढ़ें, जैसे भी पढ़ें आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि इस प्यारी सी लाइन में ना, इस प्यारी सी पंक्ति में अपने हैं, और जहाँ अपने हैं वही जिंदगी है। जैसे FM रेनबो स्टेशन ऑफ द नेशन, जहाँ दिल से दिल का कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आप हैं जो हैं अपने, और अपनों से अपना कनेक्शन, दिल से दिल का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ होता है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, आपकी सुबह बेहतरीन हो। मेरा नाम पूजा शुक्ला।

हर उस चीज से, हर उस एहसास से प्यार है, हर उस जज्बे से प्यार है जो हमें गर्व का भाव भरे, और हमारे इतिहास हमें इसी भावना से करता है सराबोर। वैसे आज के दिन कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, लेकिन हम बात करेंगे सारागढ़ी के ऐतिहासिक युद्ध की। तो इतिहास ये बतलाता है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का वो तिराहा इलाका, हालांकि अब ये जगह पाकिस्तान में है, करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस इलाके में अंग्रेज के दो किले थे। ये किले गुरिस्तां और लॉकहार्ट में थे। इन किलों के बीच में सारागढ़ी की चौकी थी। अपने इलाके में अंग्रेजों की घुसपैठ स्थानीय पठानों को पसंद नहीं आई। वो इन किलों से अंग्रेजों को भगाने के लिए हमले किया करते थे। अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन की अगुवाई में 36 सिख रेजिमेंट की 5 कंपनियों को इस इलाके में तैनात कर दिया था। सारागढ़ के कमांड हवलदार ईश्वर सिंह और 20 दूसरे जवानों के जिम्मे थी। 12 सितंबर यानी आज ही का दिन 1897 को 12,000 से 14,000 अफगान पठानों ने दोबारा सारागढ़ी पर हमला किया। इन हजारों पठानों से निपटने के लिए चौकी में 21 सिख जवान मौजूद थे। हजारों की तादाद में पठानों को देखकर सैनिकों ने इसकी सूचना दी कर्नल को। हालांकि हॉटन उस समय लॉकहार्ट के किले में थे, उन्होंने कहा कि वो इतने कम समय में कोई मदद पहुंचा नहीं सकेंगे। 21 सिख सैनिकों ने अकेले ही हजारों पठानों से लड़ने का फैसला किया और पूरा इलाका बोले सुनेहाल सत श्री अकाल के नारे से गूंज उठा। 21 सैनिकों ने 2 बार अफगान पठानों को पीछे खिसकने पर मजबूर कर दिया। पठान किले के भीतर घुसने में कामयाब नहीं हुए। आखिर में उन्होंने फैसला किया कि किले की दीवार को तोड़कर अंदर घुसा जाए। सिखों के पास गोलियां खत्म हो गई तो उन्होंने अपनी राइफल से लगे संगीन से हमला शुरू कर दिया। 6 घंटे तक युद्ध चला। 21 सैनिकों ने 600 से ज्यादा अफगान पठानों को मार गिराया। हालांकि किले पर पठानों का कब्जा हो गया, लेकिन एक दिन बाद ही अंग्रेजों ने पठानों से उस किले को वापस छुड़ा लिया। आपको याद होगा अक्षय कुमार की फिल्म आई थी 2019 में केसरी, वो इसी युद्ध पर आधारित थी। हमारे सैनिकों को, हमारे जवानों को ढेर सारा नमन सलाम। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।

0: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

Once upon a time in Mumbai फिल्म आपने देखी होगी और फिल्म की हीरोइन याद है आपको, प्राची देसाई, प्यारी सी, सुंदर सी। तो आज है प्राची देसाई का जन्मदिन। जी हाँ, 12 सितंबर 1988 में सूरत यानी गुजरात में उनका जन्म हुआ। अभिनेत्री हैं, मॉडल हैं, टेलीविजन से उन्होंने डेब्यू किया अपना 2006 में एकता कपूर के लोकप्रिय सीरियल कसम से। बानी वालिया के किरदार से उन्होंने घर घर में पहचान बनाई, हमारे दिलों में जगह बनाई। उसके बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा मूवी रॉक ऑन से, और हालांकि 2007 में डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा की वो विजेता रही थी, लेकिन हमारे दिलों में दस्तक दी उन्होंने फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। उसके बाद बोल बच्चन में भी वो नजर आई। और जन्मदिन के इस क्रम में जन्मदिन है आज आदित्य पंचोली का भी, जाने माने अभिनेता आदित्य पंचोली। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि 4 जनवरी 1965 में उनका जन्म हुआ था, कुछ सूत्रों के अनुसार 12 सितंबर यानी आज उनका जन्म हुआ मुंबई महाराष्ट्र में। और अपने फिल्मी करियर में उन्होंने नायक और खलनायक दोनों तरह की भूमिकाएं निभाई जो हमें काफी पसंद।

आई, तो उन्हीं की फिल्म का एक ये गीत जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी, लेकिन मजा खूब आया था देखने में। तो आइए सुनते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मेरा नाम पूजा शुक्ला।

0: आप नहीं भी कहेंगे तो भी हम बहुत सारे किस्से सुनाएंगे, कहानियां सुनाएंगे, गीत आप तक पहुंचाएंगे। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, दिल से दिल का कनेक्शन है आपका एफएम रेनबो पर फ्रीक्वेंसी 102.6 मेगाहर्ट्ज़। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
2: आज की रात मजा,
1: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

दिल मानने को तैयार नहीं होता, खासतौर पर उन लोगों का जाना जो धरोहर हैं, हमारा गौरव हैं। और ऐसे ही हिंदी साहित्य के गौरव, हिंदी के कथाकार, व्यंगकार और निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिनका आज निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 को। मात्र 39 वर्ष के थे वो, और पीलिया के बाद तेज बुखार हुआ जिसके बाद उनका निधन हुआ। तो अपने जीवन में उन्होंने तीन कहानियां लिखी, मात्र तीन, जिसमें सुखमय जीवन, बुद्धों का कांटा और उसने कहा था, और ये उनकी कृति कालजयी कहानी थी। इसके साथ ही प्रसिद्ध संगीतकार जय किशन साहब, यानी शंकर जय किशन साहब की जोड़ी, और हर साल 12 सितंबर को जय किशन साहब का की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1971 को। तो जय किशन दया भाई पांचाल हिंदी सिनेमा के हम सभी जानते हैं कि महान संगीतकार थे। उन्होंने अपने साथी शंकर जी के साथ मिलकर एक बहुत बेहतरीन की जोड़ी शंकर जय किशन के रूप में बॉलीवुड को कई यादगार और अमर धुनें दी। 1950 और 1960 के दशक में हिंदी संगीत जगत पर इस जोड़ी का दबदबा रहा था। उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी की ओर से हम उन्हें नमन करते हैं और उनके योगदान को श्रद्धांजलि देते हैं। हमेशा हमेशा के लिए उनका संगीत हमारे दिलों में यूं ही बसा रहेगा। बेहतरीन संगीत और बेहतरीन कार्यक्रम आपके दिलों में, आपके दिमाग पर छाया रहे, इस बात की पूरी तैयारी हम करते हैं और वादा भी करते हैं। FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मेरा नाम पूजा शुक्ला और अब ये जो ट्रैक है ना, ये मेरा फेवरेट है और मुझे उम्मीद है कि आपका भी बहुत पसंदीदा ये गीत होगा।

कि जिंदगी ये खूबसूरत सपना है, इसमें हर कोई अपना है। जियो इस तरह जिंदगी की, जियो इस तरह जिंदगी की। आपसे मिलकर हर कोई यही कहे कि जिंदगी का यही हसीन लम्हा है। और यकीन मानिए, जब हम आपसे मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं FM रेनबो के माध्यम से, तो हमें भी ऐसा ही महसूस होता है।

आकाशवाणी रेनबो पर दिल से दिल का कनेक्शन कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जादू होगा और जरूर होगा, बस मुस्कुराते रहिए, कोशिश करते रहिए, प्रोत्साहित रहिए और दूसरों को भी हमेशा हमेशा प्रोत्साहित करते रहिए। वैसे पता है आज है नेशनल डे ऑफ एनकरेजमेंट, यानी प्रोत्साहन का राष्ट्रीय दिवस है, जो कि हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है। तो दूसरों के कार्यों की सराहना करना, निराश लोगों का हौसला बढ़ाना और सकारात्मकता फैलाना इस दिन का, इस दिवस का उद्देश्य है। इसकी घोषणा पहली बार हुई थी 22 अगस्त 2007 को अमेरिका के अरकानसास राज्य में। उसके बाद प्रेरणा और प्रोत्साहन के प्रतीक के रूप में विभिन्न रूपों में दुनिया भर में याद किया जाने लगा है, ये दिवस मनाया जाने लगा है। तो ये दिन हमें याद दिलाता है कि किसी को प्रेरित करना, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए किसी बड़े संसाधन की जरूरत नहीं है, बल्कि अच्छे और सांत्वना भरे शब्दों की जरूरत होती है। तो असफलता के प्रयास जारी रखने और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए आज का दिन प्रेरित करता है और आपके मैसेजेस हमें प्रेरित करते हैं कि हम बेहतरीन कार्यक्रम आप तक लेकर पहुंचें, एक से बढ़कर एक गीत आप तक पहुंचाएं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट के लिए हम हर कार्यक्रम बहुत ही सजा कर धजा कर बहुत सारा उसमें जानकारी, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। और जब आप इस बात पर मोहर लगाते हैं कि हमारा कार्यक्रम बेहतरीन हुआ, तब यकीन मानिए हमारे चेहरे की जो मुस्कुराहट है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी मुस्कुराहट के साथ बहुत सारे बेहतरीन गीत आते रहेंगे आप तक। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मेरा नाम पूजा शुक्ला।

वीकेंड्स हैं, मौसम सुहाना है, वादियां हसीन लग रही हैं, पर ना निकलें घर से तो बेहतर, क्योंकि दिल्ली बहुत बिजी है ब्रिक्स समिट में, जहां दो दिन तक रूट बिजी रहने वाले हैं। अगर निकलना बेहद जरूरी है तो ट्रैफिक एडवाइजरी पढ़ें तभी बाहर निकलें, लेकिन घर में रहें, बाहर रहें, कहीं भी जाएं, बस सुनते रहें एफएम रेनबो जो है स्टेशन ऑफ द नेशन, और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के सफर को अब आगे बढ़ाएंगे आपके साथ गोपाल भट्ट। मुझे दीजिए इजाजत, 9 से 10 में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूजा शुक्ला का नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रेनबो स्टेशन है। सुबह के 8 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक व्यापार को सुचारू बनाए रखने के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति मार्ग और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण दिल्ली पुलिस ने आज सुबह 9:30 बजे से रात 9 बजे तक प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के द्वितीय चरण के लिए 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। योजना में छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों के रणनीतिक द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर उसकी पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ पश्चात राहत और बचाव कार्य तेज हुआ। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश के लिए तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और खेल के मैदान से जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय टीम का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। पुरुष टीम भी सेमीफाइनल में पहुंची। तो ये थे अब तक के AIRFM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में तैरती ध्वनि तरंगे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और देश भर में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप हमें सुन रहे हैं। डीटीएच के माध्यम से हम आप तक पहुंचते हैं और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू कहीं भी कभी भी आप हमें सुन सकते हैं मोबाइल के जरिए। दोस्तों, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत और ढेर सारी उम्मीद लेकर हम फिर हाजिर हैं आपके पास, लेकर आप ही का शो जिसे आप कहते हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ दिल्ली का थोड़ा रंगला मुंडा अजय गोपाल जी। आप सभी को मोहब्बत भरी एक और सुबह और उम्मीद भरा एक और दिन मुबारक हो। अगर आपकी आंख अभी अभी खुली है तो कोई बात नहीं, नींद को थोड़ा और आराम करने दीजिए, खुद को जगाइए हमारे साथ। आज का दिन कैसा होगा ये शायद हमें नहीं पता, लेकिन आज का दिन कैसा बनाना है ये हमारे फैसले पर, हमारे हाथ में जरूर है दोस्तों। तो चाय की पहली चुस्की हो या फिर ऑफिस जाने की तैयारी, ट्रैफिक में फंसने की रोज वाली कहानी, इन सब के बीच बस रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए क्योंकि आप इस सफर को तय करेंगे हमारे साथ। हालांकि आज दिल्ली पूरी तरह से तैयार है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए। कोशिश कीजिए कि अगर घर से काम कर सकते हैं, घर से चीजों को मैनेज कर सकते हैं, तो अवॉइड कीजिए बाहर, ताकि हम सब मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी जो भूमिका है उसे सुनिश्चित कर सके। और इन सब के बीच बेहतरीन म्यूजिक रहेगा आपके पास हमारी तरफ से 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये कॉम्प्लीमेंट्री म्यूजिक कमिंग अप नेक्स्ट ऑन द स्टेशन ऑफ द नेशन।

0: और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का फाउंडेशन डे आज के दिन 1947 से भरोसे और सुरक्षा की यात्रा में लाखों लोगों का साथ इन्होंने दिया। आइए सुनते हैं एक विशेष संदेश संजय जोशी जी से, जो कि हैं चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी।
1: नमस्कार टू आवर लिसनर्स, टुडे 12th September is a significant day for the Oriental Insurance Company Limited as it marks the foundation day of the organization. Let's listen in the message from the chairman cum managing director of the Oriental Insurance Company Limited, Sri Sanjay Joshi.
2: For Oriental Insurance, 12th September is not merely our foundation day. It is a reminder of a remarkable coincidence in our history. We were incorporated in 1947, the year India became independent. So, in a sense, Oriental Insurance and Independent India have grown together. Oriental Insurance Company Limited is a fully government-owned company, and as a government-owned organization, we have a responsibility that goes beyond commercial considerations. We have to be commercially sound and professionally competitive, but at the same time, we have a broader responsibility towards society and the nation. Therefore, when we look at our role in Viksit Bharat, we look at it from several dimensions. First, protecting individuals and families. Second, protecting businesses and productive assets. Third, supporting infrastructure and economic activity. Fourth, taking insurance to rural and underserved sections. Fifth, promoting insurance awareness and financial resilience. And finally, providing efficient and fair services to the policyholders. Our mission statement is that we want to be the most preferred and most respected. Most loved insurers preferred in the markets in which we operate. I would like to tell you that beyond India, we are a major insurance company in Nepal, where we have a branch, and we also have branch offices in Dubai and Kuwait also. We need to take insurance beyond the major cities. We need to reach small businesses, rural households, farmers, self-employed people, senior citizens, and other sections that may not always have adequate awareness of insurance. Viksit Bharat must mean not only prosperity for people, but resilience for people. And insurance is one of the instruments that can create that resilience.
1: You were listening to the message of the chairman cum managing director of the Oriental Insurance Company Limited, Sri Sanjay Joshi, on the occasion of the foundation day of the Oriental Insurance Company Limited.
0: 102.6 megahertz पर आप हमारे साथ सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूँ दिल्ली दसवड़ा रंगला मुंडा जी गोपाल जी, और अब एक और बेहद ही खूबसूरत ट्रैक जो है वो आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन उससे पहले ये बताना जरूरी है कि मौसम का कैसा रहने वाला है हाल। तो दिल्ली एनसीआर वालों, मौसम ने आज फिर अपना जो व्हाट्सएप स्टेटस है ना वो लगा दिया है, कभी बारिश कभी धूप, समझो मेरा मूड। बिल्कुल जी, आज तापमान जो है वो लगभग 34 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। आसमान में बादल और बारिश दोनों के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं, यानी कि छाता साथ में रखिए, और अगर धूप निकल जाए तो ऐसा ना हो कि सनग्लासेस बुरा मान जाए, तो उन्हें भी साथ रखना बेहतर होगा। और आने वाले दिनों में भी बारिश और गरज चमक का जो सिलसिला है दोस्तों, वो जारी रह सकता है। अगर हम बात करें इस आने वाले हफ्ते की, तो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, जबकि मिनिमम टेम्परेचर में गो अप टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड। बारिश के आसार पूरे हफ्ते बने हुए हैं दिल्ली एनसीआर में, और साथ ही साथ आसार बने हुए हैं बहुत ही खूबसूरत ट्रैक्स के, जो आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 102.6 मेगाहर्ट्ज। हम हैं द स्टेशन ऑफ द नेशन, पहुंचते हैं आप तक दिल से दिल तक। तो बस बने रहिए, बैठे रहिए, टिके रहिए, चिपके रहिए और सुनते रहिए 102.6 मेगाहर्ट्ज। आप सभी को एक बार फिर से मोहब्बत भरी एक और सुबह और उम्मीद भरा एक और दिन मुबारक हो। मैं हूं आपके साथ दिल्ली दसौड़ा रंगीला मुंडा जी गोपाल। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनदर नॉटी 90s आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी के सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो पर। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग अप नेक्स्ट।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ दिल्ली दसौड़ा रंगीला मंडा जी गोपाल दोस्तों। और घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 8:09:30। जिंदगी में ना अनिश्चितताएं जो होती है ना वो आती जाती रहती है, लेकिन एक भरोसा ऐसा हो जो हर कदम पर आपके साथ खड़ा हो तो सफर आसान हो जाता है। जी हाँ, आज का दिन खास है क्योंकि आज

102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में। दोस्तों इस घड़ी वक्त हुआ है 8:19 यानी कि सरड़े सुबह के 8:15 हो चुके हैं भाई साहब। और दिल्ली एनसीआर वालों को हम बता दें कि रविवार को जो मेट्रो है ना वो थोड़ा सा जल्दी उठने वाली है। जी हाँ, अगर आप अपना रविवार का कोई प्लान बना रहे हैं, संडे का कोई प्लान बना रहे हैं सुबह सुबह घर से निकलने का, तो ये आपके लिए बढ़िया वाली खबर है दोस्तों। और वैसे भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो चल रहा है, तो पहले तो कोशिश कीजिए कि अगर हम अवॉइड कर सके ट्रैवल, ताकि जो ट्रैफिक है दिल्ली का वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज हो सके। हम सब की जिम्मेदारी है दोस्तों, पूरी दुनिया की नज़रें इस समय दिल्ली पर हैं और दिल्ली वालों को दिखाना है कि हम कितना हमारा जो आतिथ्य है, जो हमारी हॉस्पिटैलिटी है, उसका कोई सानी नहीं है दोस्तों। और अगर सफ़र करना है तो दिल्ली मेट्रो भी अपनी तरफ से आपको जो सेवाएँ देगी वो और दिन के मुकाबले थोड़ा सा जल्दी, सुबह 6 बजे से सभी लाइनों पर जो ट्रेन सेवाएँ हैं वो शुरू हो जाएगी। मतलब रविवार को जब ज्यादातर लोग तकिए से कह रहे होंगे बस 5 मिनट और, तब दिल्ली मेट्रो कह रही होगी 5 मिनट नहीं भाई, मैं तो 6 बजे से चल रही हूँ। तो चाहे आपको एयरपोर्ट जाना हो, कोई जरूरी काम हो, एग्जाम हो या फिर सुबह की कोई अपॉइंटमेंट, आपके पास मेट्रो से सफर करने का ऑप्शन है सुबह 6 बजे से। और हाँ, इसका फायदा उठाने वालों के लिए एक सलाह जरूर है, मेट्रो जल्दी चल रही है लेकिन घर से निकलने के लिए अलार्म भी जल्दी लगाना पड़ेगा। तो भाई साहब, रविवार को अगर सफर का प्लान है तो समय का जरूर ध्यान रखिएगा। निकलने से पहले अपनी लाइन और स्टेशन की ताजा जानकारी जरूर चेक कीजिए। मेट्रो स्टेशन तक अगर आपको पहुंचना है तो जरूर देखिए कि कहीं रूट में कोई डायवर्जन तो नहीं है। मेट्रो तैयार है सुबह 6 बजे। अब देखना यह है कि दिल्ली में जिन्हें जाना है वो साहब समय पर अपने अलार्म से जाग पाते हैं या नहीं। आई एम श्योर यू विल, क्योंकि दिल्ली कभी किसी को निराश नहीं करती। 102.6 मेगाहर्ट्ज पर लगातार हम पहुंचा रहे हैं हर वो खबर जो आपके लिए रखती है सीधा सामाजिक सरोकार, मॉर्निंग मैगजीन शो जिसे आप कहते हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ दिल्ली दसाना रंगीला मुंडे आज गोपाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग अप नेक्स्ट अभिजीत दा की आवाज में, कभी यादों में आओ। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्टेशन ऑफ द नेशन, बजाते रहिए।

0: वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, अभिजीत दा गा रहे थे आपके लिए ट्रैक हमारे साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं हमारा और आप सभी का फेवरेट मॉर्निंग मैगजीन शो गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। गुड मॉर्निंग ते परिपना, नमस्कार, वाडिकम, सात श्री अकाल आप सभी को दोस्तों। और घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में यहाँ वक्त हुआ है 8:27, यानी आपकी हमारी भाषा में सरडे सुबह के लगभग लगभग 8:30 होने को हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं रुकूंगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। जब हम बोलते हैं छोटे से ब्रेक, ट्रस्ट मी आई मीन इट, बिल्कुल 2 मिनट से भी कम समय में वापस लौट रहा हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो नीड अ स्मॉल ब्रेक। मुझे बनानी है अपनी पता का चाय।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
6: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
7: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience in

0: innovation, cooperation and sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: बिल्कुल जी, और दिल्ली पूरी तरह से तैयार है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए। हम आकाशवाणी परिवार भी हमारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

बिल्कुल दोस्तों, और इसी के साथ घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में एग्जैक्टली 8:30 हो चुके हैं, बोले तो आपकी हमारी भाषा में सुबह के 8:30 हो चुके हैं भाई साहब। और खबर पे खबर, ऐसी खबर कि दिल खुश हो जाए। मेट्रो की खबर के बाद एक और खबर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, और फास्टैग वालों के लिए खबर है। मतलब आप गाड़ी चलाते तो आई एम श्योर कि आपने भी फास्टैग लिया ही है, और ये जो खबर है ना, इसको सुनकर आप ही नहीं आपकी कार भी बोलेगी वाह मजा आ गया गोपाल। अब फास्टैग का स्टिकर बदले बिना भी आप अपना बैंक जो है वो बदल सकते हैं। फिनटेक में ये अपग्रेड्स आपको देखने को मिला दोस्तों, और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप जो आपका फास्टैग है एक बैंक से जुड़ा है और आप अपना बैंक बदलना चाहते हैं, तो स्टिकर का जो बदलने का झंझट है ना वो अक्सर सामने आ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब आ गया है वन टैग वन नेशन। बिल्कुल जी, बैंक बदल गया लेकिन फास्टैग बिल्कुल वही रहेगी। मतलब बिल्कुल कुछ कुछ ऐसे ही ना कि घर बदल लिया लेकिन नेम प्लेट वही रख लो। इस सुविधा का मकसद है फास्टैग को दूसरे बैंक से लिंक करना। बिना गाड़ी के विंडस्क्रीन से पुराना फास्टैग उखाड़ने और नया चिपकाने की परेशानी दूर रहेगी, और हम सभी के लिए एक छोटी बात नहीं भाई साहब, क्योंकि फास्टैग का स्टिकर बदलना मतलब पहले पुराना निकालो फिर नया लगाओ और फिर ये देखो कि सीधा लगा भी है नहीं, गाड़ी की पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। वन टैग के जरिए फास्टैग को दूसरे बैंक में स्विच करने की सुविधा मिलेगी, और बैंक बदलने का पूरा प्रोसेस है वो भी एकदम आसान हो जाएगा। तो अगर आप फास्टैग यूज करते हैं और बैंक बदलने की सोच रहे हैं तो वन टैग आपके लिए काम की सुविधा हो सकती है। यानी अब बैंक बदलो, फास्टैग नहीं, गाड़ी वही, स्टिकर वही, बस बैंक नया और टेंशन थोड़ी सी कम। ऐसी काम की खबरें अगर आपको जाननी है और साथ ही साथ कुछ बेहतरीन म्यूजिक, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, बने रहना है, बैठे रहना है, टिके रहना है, चिपके रहना है हमारे साथ, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्टेशन ऑफ द नेशन बजाते रहिए, क्योंकि अब चित्रा सिंह आपके साथ नॉटी 90s का एक और ट्रैक लेकर पहुंच रही हैं 102.6 MHz पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो, ये शो है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ दिल्ली दसवाणा रंगला मुंडा आज गोपाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन।

वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त अजय गोपाल, वेलकम्स यू वंस अगेन। ये शो है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सुबह सुबह हर काम की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं, और वो भी कॉम्प्लीमेंट्री म्यूजिक के साथ। और ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कहीं मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इसी को हम कहते हैं इंफोटेनमेंट। बिल्कुल फटाफट आपको बताते दिल्ली एनसीआर वालों कि आज कैसा रहने वाला है ट्रैफिक का हाल। एब्सोल्युटली वंस अगेन ब्रिक्स समिट जो है उसका आयोजन किया जा रहा है, और हम सब की जिम्मेदारी बनती है दिल्ली वासी होने के नाते, दिल्ली एनसीआर वासी होने के नाते, कि हम पूरी दुनिया को बताएं कि हमारी हॉस्पिटैलिटी का कोई जवाब ही नहीं है। और उसके लिए सबसे पहला आग्रह तो यही है कि कोशिश कीजिए कि बहुत ज़रूरत ना हो तो घर पे फैमिली के साथ टाइम गुजारिए, कुछ अच्छा सा OTT पर कॉन्टेंट देखिए, कुछ बढ़िया सा बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। बाहर कम निकलेंगे तो आपको भी असुविधा कम होगी दोस्तों। और जहाँ गाड़ियाँ चलती कम हैं, हॉर्न का म्यूजिक ज़्यादा बजता है, वैसी वाली दिल्ली में आज अच्छा लगा मुझे जब मैं सुबह सुबह आ रहा था। इट वॉज ऑल डिसिप्लिन एंड दैट्स वॉट वी नीड एवरी डे बाय द वे। लेकिन आज थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा सीरियस होना होगा, हमको थोड़ा सा

और डिसिप्लिन हमको रखना होगा दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में ब्रिक्स समिट के चलते कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन और जो सुरक्षा प्रतिबंध है वो लागू है। तो अगर आपका प्लान है भाई बस दिल्ली के अंदर से निकल जाऊंगा, 5 मिनट का काम है, तो भाई साहब बता दूं कि ये 5 मिनट ना 50 मिनट भी हो सकते हैं। खासतौर से सेंट्रल दिल्ली और प्रगति मैदान भारत मंडपम के आसपास आपको खास सावधानी रखनी होगी, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक मूवमेंट बहुत नियंत्रित किया जाएगा, डायवर्जन पॉइंट्स बनाए गए हैं। कोशिश कीजिए कि उन रूट्स को आप अवॉइड करें, और साथ ही साथ मेट्रो को अगर आप प्रेफरेंस देंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि गाड़ी घर पर आराम करेगी और आपका बीपी भी 102.6 MHz पर। ये हमारी सलाह है दोस्तों आपके लिए। एक और सलाह आपको दे दूं कि गूगल मैप्स को भगवान मत समझना, क्योंकि वो रास्ता तो दिखाएगा लेकिन जैसे ही बैरिकेड्स आपको नजर आएंगे तो शायद खुद गूगल मैप भी बोले भैया देखो अब आप अपना खुद ही देख लीजिए, तो निकलने से पहले अपना रूट चेक कर लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलिए और ट्रैफिक पुलिस की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, जिसे आप कहते हैं दिल्ली का सोना रंगीला मुंडा अजय गोपाल, एक बार फिर से आपसे निवेदन करता है, नमस्कार भी करता है, प्रणाम भी करता है और रिक्वेस्ट भी करता है साथ में कि आज और कल हमें पूरी दुनिया को दिखाना है कि हमारी हॉस्पिटैलिटी का कोई जवाब नहीं है। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्टेशन ऑफ द नेशन बजाते रहिए, क्योंकि अब तो जी राना और श्रेया घोषाल की आवाज में शोर इन द सिटी बिल्कुल नहीं है, ये बेहतरीन मेलोडियस ट्रैक मिलेगा आपको, तो इसलिए कहीं जाएगा नहीं, रेडी किसी बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं।

2.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये बेहतरीन वाला ट्रैक आप सुन रहे थे हमारे साथ घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में। दोस्तों इस घड़ी वक्त हुआ है 8:45 यानी कि आपकी हमारी भाषा में सरड़े सुबह के 8:45 हो चुके हैं। दोस्तों लगभग 15 मिनट का समय मेरे पास और है आप तक हर वो खबर पहुंचाने का जो रखती है आपसे सीधा सामाजिक सरोकार।

0: और वो भी कॉम्प्लीमेंट्री म्यूजिक के साथ, जिसे सुनकर आप कहते हैं वाह जियो मेरे लाल, मजा आ गया गोपाल। लेकिन अभी मैं यहाँ पर रुकूंगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। और जब हम कहते हैं ना कि बहुत ही छोटा सा ब्रेक, तो उसका मतलब बहुत ही छोटा होता है, I mean it। बिल्कुल दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड में वापस लौट रहा हूं मैं। किसी भी स्टेशन से मुकाबला कर लीजिए, हमसे बेहतर हो ही नहीं सकता। इसीलिए कह रहा हूं, बने रहिए, बैठे रहिए, टिके रहिए, चिपके रहिए और सुनते रहिए दिल से दिल तक।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
8: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

बिल्कुल जी, यह है आकाशवाणी रेनबो और मैं हूं आपके साथ आपका म्यूजिकली यॉर्स 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जिसे आप कहते हैं दिल्ली दा सोना रंगीला मंडा आजे गोपाल पहली पहना था। नमस्कार, अवे गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। और एक और काम की खबर आपके लिए, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका फास्टैग भी है, लेकिन अब आपकी जमीन भी कहेगी भाई साहब अब हमारा भी तो कुछ होना चाहिए, मेरा भी आधार कार्ड बनवा दो। और अगर आप अपनी जमीन अपनी प्रॉपर्टी से ये सुन रहे हैं उनके दिल की आवाज, तो बिल्कुल जी, अब सरकार जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। यानी कि हर जमीन के प्लॉट को एक यूनिक पहचान नंबर दिया जाएगा, अब उनका भी होगा आधार, जिसे कहा जाएगा भू आधार, एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर। दोस्तों अब सोचिए ना, पहले घर में पूछा जाता था ये जमीन किसके नाम पे है, फिर दादाजी ना पुरानी वाली फाइल निकालते थे और फाइल के अंदर से एक और फाइल निकालते थे, फिर उसके अंदर से एक और फाइल निकालते थे, और उसके बाद अंदर से वो कागज जिसे देखकर पूरा परिवार बोलता था हाँ हाँ यही है। अब कोशिश कीजिए कि जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से हम जोड़ेंगे और प्लॉट की पहचान, आपकी प्रॉपर्टी की पहचान जो है, उसका रिकॉर्ड जो है वो और ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज दिल्ली का ट्रैफिक है। दोस्तों यानी जमीन की पहचान होगी और ज्यादा आसान, रिकॉर्ड्स होंगे और ज्यादा डिजिटल, और उम्मीद है कि कागजों की वो मोटी मोटी जो फाइल्स है ना वो पतली हो जाएगी। और भाई हाँ, जमीन का मामला हो ना तो एक कहावत जरूर याद आती है, कागज संभाल के रखना। अब कागज के साथ साथ हम कहेंगे डिजिटल रिकॉर्ड्स भी संभाल के रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपकी जमीन आपकी प्रॉपर्टी भी कह सकती है आप जानते हो मेरा नाम क्या है, मेरा भू आधार क्या है। बिल्कुल दोस्तों, 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ दिल्ली दा सोना रंगीला मंडा अजय गोपाल, और इसी काम की खबरों को बढ़िया मजेदार तरीके से आप तक पहुंचाता रहूंगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए, बैठे रहिए, टिके रहिए, चिपके रहिए और सुनते रहिए दिल से दिल तक। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट, आज जरूरत ना हो तो घर से मत निकलिएगा, पूरी दुनिया दिल्ली और दिल्ली वालों की तरफ देख रही है, क्योंकि हमें बताना है कि हमसे बेहतर हॉस्पिटैलिटी, हमसे बेहतर आतिथ्य किसी का हो ही नहीं सकता। अभी इंजॉय कीजिए बेहतरीन गाना आपके लिए आकृति कक्कर मोनाली असुहम की आवाज में फ्रॉम द फिल्म बिल्लू।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है खास। और धीरे धीरे स्टूडियो में अब आती हुई पूजा और कह रही कि भैया अब कुर्सी छोड़ने का समय आ गया, लेकिन इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे हम, अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा इनको मज़ा आता है ना, दैट्स बाय द वे हम सभी को आता है दोस्तों। और आजकल एक नया वाला ट्रेंड चला हुआ है 80s में अपनी फोटोज़ को कन्वर्ट करने का, 90s में अपनी फोटोज़ को कन्वर्ट करने का। आई एम नॉट श्योर कि आपने किया नहीं किया, बट ट्रस्ट मी, इट्स वेरी फनी। और स्पेशली जब आपने वो दौर ना देखा और उसमें अपने आप को जब आप इमेजिन करते हैं ना, तो आपकी जो फैंटेसीज है ना, वो एकदम अलग लेवल पे चले जाते हैं। दैट्स हाउ छोटी छोटी चीजें भी कितनी जल्दी ट्रेंड करने लग जाती है ना। दैट्स द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया दोस्तों। और बस इतना है कि इस सोशल मीडिया का, इस AI का इस्तेमाल आप बेहतर करने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, हमारे समाज को बेहतर करने के लिए, हमारे आसपास की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए, अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए करें तो बेहतर है। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हो, क्योंकि हर चीज, जैसा कि हम साइंस के लिए भी कहते हैं कि विज्ञान कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी है और अभिशाप भी है, अगर सही तरीके से यूज

0: किया जाए तो जिंदगी जो है वो बदल जाती है विज्ञान से दोस्तों, साइंस से, और समथिंग नाउ सिमिलर फॉर एआई एज वेल, क्योंकि आप चाहें या ना चाहें, यू लव इट और यू डू नॉट लव इट, बट यू कांट अवॉइड इट एट द एंड ऑफ द डे, एआई इज द फ्यूचर, ये बहुत श्योर है दोस्तों, लेकिन हम सबको बहुत ही सावधानी से इसका इस्तेमाल करना होगा। और इसी के साथ मुझे आपसे कहना होगा कि इसी मैसेज के साथ आपसे अनुमति लूंगा, क्योंकि कोई मेरे लिए एक गीत गा रहा है और कह रहा है कि भैया मेरे चन्ना जल्दी घर आ जाओ, ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है। तो चलिए मैं चलता हूँ दोस्तों, और पूजा शुक्ला के पास मैं छोड़े जाता हूँ स्टूडियो की कुर्सी, और वो आपके लिए लेकर आएंगी दिल के तराने, गाने नए पुराने, जहां पर एकदम नॉन स्टॉप अंदाज में आप सुनने वाले हैं बेहतरीन म्यूजिक बैक टू बैक।
1: बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गोपाल, बहुत ही अच्छा सफर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का आपके साथ रहा, बहुत बेहतरीन गीत, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, और यही तो खूबी है एफएम रेनबो की गोपाल।
0: बिल्कुल दोस्तों, और इस इन्फोटेनमेंट का दौर जारी रहेगा 24 घंटे सातों दिन। बहरहाल आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त बोले तो दिल्ली तो थोड़ा रंगीला मुंडा, आज गोपाल आपसे अनुमति चाहता है रेनबो की सतरंग की दुनिया में कुछ और सतरंग की सपनों को बुनता हुआ फिर मिलूंगा मैं आपसे। तब तक के लिए बस यूं ही चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए और दिल में हिंदुस्तान बनाए रखिए। शुभ दिवस, नमस्कार, जय हिंद, एंड चन्ना घर पहुंच रहे जी।

लीजिए पेश है अब तक के मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर समिट आज से नई दिल्ली में शुरू। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक व्यापार को सुचारू बनाए रखने के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति मार्ग और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण दिल्ली पुलिस ने आज सुबह 9:30 बजे से रात 9 बजे तक प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव किया। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के द्वितीय चरण के लिए 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हुए हैं। योजना में छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों के रणनीतिक द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर उसकी पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ बाद राहत और बचाव कार्य तेज हुआ। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश के लिए तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल्स में आज भारतीय महिला टीम का सामना दक्षिण कोरिया से, पुरुष टीम भी सेमीफाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

यू ही रॉक एंड रोल करते रहिए, डोलते रहिए, मस्ती में झूमते रहिए, अपनी जिंदगी के कलाकार खुद बनिए भाई, और वही रंग भरिए जो दिल को सुकून दे। इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख, नफरत के लिए बिल्कुल बिल्कुल भी समय ना रहे। थोड़ी सी फिक्र, थोड़ी कदर, कभी कभी खैर खबर, इन छोटी छोटी बातों का होता है बेहद असर, और हम पर असर सिर्फ और सिर्फ आपका, क्योंकि हमारा और आपका है दिल से दिल का कनेक्शन। एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है दिल के तराने, गाने नए पुराने। मेरा नाम पूजा शुक्ला।

दिल की दीवानगी यूं ही बनाए रखें लेकिन घर में रहें, क्योंकि दिल्ली बिजी रहने वाली है। सुबह 9:30 बजे से रात 9 बजे तक जितने भी प्रमुख मार्ग हैं वहां पर यातायात में बदलाव किया गया है, बार बार हम आपको बता रहे हैं। तो अगर आपको निकलना है तो पहले ट्रैफिक एडवाइजरी देखें पढ़ें, उसके बाद ही घर से बाहर निकले। लेकिन कहीं भी जाएं सुनते रहें एफएम रेनबो, स्टेशन ऑफ द नेशन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के बाद दिल के तराने, गाने नए पुराने।

गली में फिरते फिरते भटक गए हैं, निकल चुके हैं लेकिन भटक गए हैं, तो घबराइए मत, जल्दबाजी मत कीजिए। किसी भी चीज़ में हड़बड़ी दिखाएंगे ना तो बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है, तो बस धैर्य रखिए। अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, बस याद रखिए कि मुश्किल में आना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उसमें हंस कर बाहर निकलना इज़ एन आर्ट ऑफ लाइफ। तो इस आर्ट में आपको माहिर होना है, और अगर फंसे भी हैं, रुके भी हैं, थमे भी हैं, तब भी सुनते रहिए हमें FM रेनबो स्टेशन ऑफ द नेशन। चेहरे पर रहिए मुस्कुराहट, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।

साथ समंदर नहीं जाना, कहीं नहीं आना, बस जहां बैठे हैं ना वहां पर ट्यून कीजिए 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और सुनते रहिए फिल्म रेनबो जो है स्टेशन ऑफ द नेशन। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।

0: 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
4: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
3: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
4: हैं इतनी जल्दी?
3: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

ये है आकाशवाणी रेनबो कार्यक्रम है दिल की तराने, गाने नए पुराने। मेरा नाम पूजा शुक्ला।

मैं यहाँ, अगर मुझे ढूंढ रहे हैं तो बस ट्यून कीजिए 102.6 मेगाहर्ट्ज़ जो है एफएम रेनबो स्टेशन ऑफ द नेशन, और जुड़ जाइए मेरे साथ। जैसे महाराष्ट्र से पंकज जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से राशि साहनी, राजकुमार के अंकोला महाराष्ट्र से, मनीष अरोड़ा दिल्ली से, राहुल त्रिपाठी फरीदाबाद से, प्रदीप सलूजा जनकपुरी से, और पंडित अनंजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप भी जुड़िए हमारे साथ, सुनते रहिए एफएम रेनबो जो है स्टेशन ऑफ द नेशन। इस जिंदगी को ना जिसकी जरूरत है वो है आपकी दीवानगी। मस्त रहिए, मगन रहिए, जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती ना बिताएं। एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल की तरह, गाने नए पुराने, मैं पूजा शुक्ला आपके साथ।

किसी भी जगह पर आप हों, ऐसे जब गीत सुनते हैं ना तो अपने आप पैर जो है वो उठने लगते हैं, हिलने लगते हैं, आप झूमने लगते हैं। और अगली खबर जो है, ये जो खबर बताने जा रही हूँ उसको सुनकर भी आप झूम जाएंगे, क्योंकि अब एक टिकट से मेट्रो, बस, टूरिस्ट जगहों पर आपकी एंट्री हो सकती है, जिसका प्लेटफॉर्म हो गया है लॉन्च। जी हाँ, आंध्र ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में डिजिटल पेमेंट और टिकटिंग को आसान बनाने के लिए कई नए फीचर्स पेश हुए हैं। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के इन फीचर्स का मकसद है कि लोगों को सफर के दौरान अलग अलग टिकट या फिर कार्ड रखने की जरूरत कम पड़े और स्मार्टफोन से ही अधिकतर काम हो जाए। यूनिफाइड टिकटिंग प्लेटफॉर्म को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। इसका मकसद अलग अलग जगहों की टिकट व्यवस्था को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। तो भविष्य में हम एक ही बुकिंग और QR कोड की मदद से पूरे देश में मेट्रो या बस में सफर करने के साथ टूरिस्ट जगहों की भी टिकट ले सकेंगे। है ना शानदार खबर? ऐसी ही शानदार खबरें, ऐसी ही जानकारियां, ऐसे ही मधुर मधुर गीत दिन भर आप सुन सकते हैं। करना वास आपको ये है कि ट्यून बनाए रखिए FM 102.6 MHz, जो कि है FM रेनबो स्टेशन ऑफ द नेशन। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो एचआईवी से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें।
7: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
8: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी।

और हमारी जिंदगी में शामिल है आचार विचार व्यवहार और मेहमान नवाजी। तभी तो मेहमानों की आगवानी की शुरुआत हो चुकी है। ब्रिक्स समिट के लिए दिल्ली में खास इंतजाम हो चुके हैं। रंग बिरंगी दिल्ली हमारी नजर आ रही है, लेकिन कई सड़कों पर ट्रैफिक पाबंदी है, डायवर्जन्स लागू हो गए हैं। इस बीच कल यानी 13 सितंबर को छात्रों के लिए और आम जनता की आवाजाही आसान बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो सुबह 6 बजे से शुरू होगी। डीएमआरसी के मुताबिक रविवार को सभी मेट्रो लाइन्स पर ट्रेन सर्विस तय समय से 1 घंटा पहले शुरू की जा रही है। और डीएमआरसी ने ब्रिक्स समिट के मद्देनजर एक अपील भी की है हम सबसे कि भाई सड़क मार्ग के बजाय मेट्रो से सफर करने की कोशिश करें। छात्रों और अन्य यात्रियों से अपील की गई है कि वो यात्रा की पहले से प्लानिंग बनाएं। परीक्षा या अन्य जरूरी काम के लिए अगर आप निकले हैं तो पर्याप्त समय लेकर घर से निकलें। और हमारी भी एक छोटी सी अपील आपसे कि कहीं भी जाएं बस जुड़े रहें एफएम रेनबो के साथ जो है

स्टेशन ऑफ द नेशन, आप सुन रहे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मेरा नाम पूजा शुक्ला। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल की तराने, गाने नए पुराने। और बिना किसी गलती के बता दूं कि आकांक्षा आ चुकी है मैचलेस म्यूजिक कार लेकर, तो मेरे बाद उनके साथ सुनते रहिए फिल्म रेनबो, जो है स्टेशन ऑफ द नेशन।

0: break, we will be right back. But promise me, please promise me that you will not touch the dial. And please continue to tune in to the station of the nation, 102.6 MHz, Akashwani FM, Rainbow.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: Welcome back, dear listeners. You are tuned into 102.6 MHz Akashwani FM Rainbow, and the program live right now on the radio waves is called The Matchless Music Hour, and this is me, your host for today's edition, Akansha Mishra. Yes, we are half past the show and it's time for us to play the second Hindi track of the show. And the track that we have queued up for you is by a very, very, of course, very beautiful evergreen artist who is celebrated still today from Hindi film music. And the singer of the song was Mohammed Rafi. And

लीजिए प्रस्तुत अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रायजिनकोफ और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्निनेड आर मार्कोस आज नई दिल्ली पहुंचे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक व्यापार को सुचारू बनाए रखने के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति मार्ग और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण दिल्ली पुलिस ने आज रात 9 बजे तक प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव किया। सऊदी अरब ने विद्रोही

के हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ बाद राहत और बचाव कार्य तेज हुआ। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश के लिए तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय महिला टीम का सामना दक्षिण कोरिया से, पुरुष टीम भी सेमीफाइनल में पहुंची। तो ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आप सुन रहे हैं म्यूजिकल योर्स, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं। और अब वक्त हो गया है आपके अपने मन पसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, बॉलीवुड से सजी धजी खबरों के प्रोग्राम का, यानी आ गया आपका खास प्रोग्राम जिसका नाम है बॉलीवुड ट्रेल्स। और आज बॉलीवुड ट्रेल्स के साथ आपके साथ स्टूडियो में उपस्थित आपका दोस्त रोस्ट प्रवीण शर्मा।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।

दोस्तों, नीतीश तिवारी की आगामी फिल्म रामायण की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है और इसमें कुणाल कपूर को भी एक अहम किरदार निभाने का मौका मिला है। साथ ही इसमें लारा दत्ता के केकई का किरदार निभाने की भी चर्चा है।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आज फिर लेट हो गए।
2: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ बाहर क्यों बैठे थे। रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: दोस्तों ब्रेक के बाद पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी FM रेनबो पर। साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्म हनुमान अंश के दूसरे पार्ट के पर्दे पर रिलीज होने का फैंस बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो दूसरे पार्ट में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी नजर आ सकते हैं, जिसके बारे में हाल ही में फिल्म की निर्मात्री नर्मदा सिंह ने बात की और बताया कि उनकी बातचीत इस कपल के साथ हुई है।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: building for resilience, innovation, cooperation and sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज जिन बॉलीवुड सितारों का जन्मदिन है उनके बारे में आपको बताते चलें। पहले हैं प्राची देसाई, रॉक ऑन वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई और बोल बच्चन जैसी बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ टीवी सीरियल्स में भी उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। इनका जन्म आज यानी 12 सितंबर 1988 को हुआ था। दूसरी हैं अमला अक्किनेनी। 12 सितंबर 1967 को जन्मी अमला ने बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन फिल्मों जैसे शिवा के साथ साथ तमिल, तेलुगू और मलयालम फिल्मों में भी काफ़ी बड़ा नाम कमाया है। और तीसरे हैं आदित्य पंचोली। बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता आदित्य पंचोली का जन्म 12 सितंबर 1965 को हुआ था। तो इन सभी बॉलीवुड हस्तियों को हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी FM रेनबो पर। कहीं मजाइए, हम हाजिर हो रहे हैं इस प्यारे से मस्ती भरे गीत के बाद।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को

0: डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

छोटे से ब्रेक के बाद पुनः आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। साथियों, करीब 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी नीम करोली बाबा के जीवन सफर पर बनी फिल्म को मिली अप्रत्याशित सफलता ने न सिर्फ निर्माताओं को चौंकाया है बल्कि फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। इससे पहले कृष्णावतारम पार्ट 1, लालू कृष्ण सदा साहित्य और हनुमान जैसी फिल्मों की सफलता भी इस बदलते रुझान की ओर इशारा कर चुकी है। दोस्तों, आगामी दिनों में कई धार्मिक फिल्में आने की संभावना है। अब करण जौहर भी राधा और कृष्ण की कहानी पर आधारित एक फिल्म बनाने की तैयारी में है। अभिनेता संजय मिश्रा 13 साई नाम की फिल्म में साईं बाबा की भूमिका निभाते नजर आएंगे। वहीं श्री खाटू श्याम जी पर भी फिल्म बनाई जा रही है। इसके अलावा महाकाव्य श्री रामायण कथा भी निर्माणाधीन है। दूसरी ओर रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायणम दिवाली पर रिलीज होगी। और दोस्तों, आज अब बात करते हैं बॉलीवुड क्विज के बारे में। हमारा आज का सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वैसे एक सवाल बड़ा आसान है, समय भी हमारे पास कम है थोड़ा, तो कोशिश करिएगा इसका उत्तर जल्दी देने की। तो सवाल आज का यह है दोस्तों कि सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता विकी कौशल की पहली फिल्म कौन सी थी, ये किस वर्ष रिलीज हुई थी और इसके निर्देशक कौन थे। इस सवाल के दोस्तों 3 पार्ट हैं, यानी विकी कौशल की पहली फिल्म का नाम, ये किस साल आई थी और इसके निर्देशक कौन थे। आप अपना जवाब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो नंबर है, आप जानते हैं, 9868107070। जी हाँ, 9868107070। कहीं मत जाइए, हम हाजिर हो रहे हैं इस प्यारे से गीत के बाद।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: दोस्तों सितंबर के महीने में एक हॉरर फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ये कोई हॉरर कॉमेडी नहीं बल्कि सीरियस हॉरर थ्रिलर है। ये फिल्म है 418 द फिल्म KGF और सालार जैसी फिल्में बनाने वाले प्रशांत नील इस फिल्म को लेकर आए हैं। इसके निर्देशन कीर्तन नदगौड़ा ने किया है। 418 द फिल्म में सूर्या राज, चरण, लक्का राजू, प्रीति जैसे कलाकार अहम भूमिका में हैं। ये फिल्म 18 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दोस्तों इस फिल्म का क्लैश करीना कपूर खान की फिल्म क्राइम थ्रिलर दायरा और कुणाल खेमो की कॉमेडी ड्रामा वाइब से होगी। बात करें इसकी कहानी की तो ये फिल्म दूर दराज के डरावने और खौफजदा गांव में बने मेडिकल कॉलेज पर आधारित है। ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है। और आइए बात करते हैं आज के सवाल के उत्तर की। दोस्तों तो आज का जो हमारा वो सही जवाब सबसे पहले भेजा है वो है प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयां प्रवीण चौहान जी इस सवाल का सही उत्तर देने के लिए। इनका सवाल बिल्कुल

आप सही है कि विक्की कौशल की पहली फिल्म का नाम मसान है, जो 2015 में आई थी और नीरज घायवान इसके निर्देशक थे। इसके अलावा हमारे हमारे हमारे पास कई और श्रोताओं ने भी सही जवाब भेजा है। ये है सूरजकुंड रोड मेरठ यूपी से तरुण कोहली। इसके अलावा है राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से। इसके अलावा है मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्तिनगर नई दिल्ली से। नीतीश कुमार रेशम नगर भगैया झारखंड से भी हैं। और ये हैं पंकज अमरावती महाराष्ट्र से। आप सभी को बहुत बहुत ढेरों हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और इसी के साथ फिलहाल प्रवीण शर्मा लेता है आपसे बॉलीवुड ट्रेल से इजाजत, लेकिन कहीं मजा आए क्योंकि एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। प्रोग्राम होगा मेरा वाला सॉन्ग, जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं दोस्तों, वो होगा दोपहर 1 बजे। तो तब तक के लिए प्रवीण शर्मा को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।

0: Welcome back, and that was The Sailor Song by Gigi Perez. And time by the studio clock is 41 minutes past 12 p.m., which means we are heading towards the last quarter of the show. And it's time for us to take a break, and promise this is the last break, and we will be right back. Stay tuned.
1: आज फिर लेट हो गए?
2: अरे यार, वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।

0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे, रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: Welcome back, dear listeners. You are tuned into 102.6 MHz Akashwani FM Rainbow, and the program live right now is called Play It Cool, and where we are playing coolest of music in town for you. And coming up next, the track's name is called Show Pony, and it's by Glass Animals. Enjoy.

लीजिए प्रस्तुत है अब तक के एफएम रेडियो में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग, इथोपिया के प्रधानमंत्री डॉ आबी अहमद अली और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक व्यापार को सुचारू बनाए रखने के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति मार्ग और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण दिल्ली पुलिस ने आज रात 9 बजे तक प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव किया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ बाद राहत और बचाव कार्य तेज हुआ। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश के लिए तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आयरना सवालिंका का आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना का सामना करेंगी। और महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मौके में खेले गए

नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है दोस्तों। आप सुन रहे हैं म्यूजिकल यूर्स, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं। और अब वक्त हो गया आपके अपने खासम खास प्रोग्राम का, जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में आप सुनते हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन और कीजिए हमें व्हाट्सएप अपने पसंद के गीत, जी हाँ, सुनने के लिए, तो जो आपको बहुत पसंद है, जिसे आप सुनना चाहते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट करें, 9868107070, 9868107070। और आज आपके साथ, आपका साथ निभाने स्टूडियो में उपस्थित आपका दोस्त रोज प्रवीण शर्मा। तो सुनते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप हैं इस वक्त मेरा वाला सॉन्ग की खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण के साथ और सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक। यश शिंदे का हमें मैसेज मिला है मुंबई से, कह रहे हैं कि दिल के हर तार को जो छू जाए वो अंदाज है आपका, एफएम रेनबो की लहरों पर बहता एक हसीन साज है आपका। प्रवीण जी, आपकी गुफ्तगू में घुली है दिल्ली की वो मिठास जो मायूस दिलों में भी जगा दे जीने की एक नई आस। क्या बात है, बहुत खूब यश जी, इतनी खूबसूरत पंक्तियों के लिए। और ये कह रहे हैं कि ये एक गीत सुनना चाहते हैं मोहब्बत फिल्म से, प्यार किया है। और ये भी कह रहे हैं, कि आज मशहूर गायक विनोद राठौर साहब को मैं ये गीत डेडिकेट करना चाहता हूँ उनके जन्मदिवस पर। और इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखकर भेजी उनकी तारीफ में, अर्ज किया है, आपकी आवाज में छुपा है वो, आपकी आवाज में छुपा है जो जादू, कर देता है हर एक दिल को बेकाबू। सुरों के इस शहंशाह को दिल से बधाई, सदा गूंजती रहे आपकी महफिल तन्हाई। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं विनोद राठौर साहब। शुक्रिया यश साहब, आपको भी यश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये आपका गीत, आपकी नजर।
1: एवरी

दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। अगला संदेश में मिला है, ये है अगला मैसेज आया है हितेंद्र दास का आसाम से। हितेंद्र दास जी ने कुछ पंक्तियां लिखकर भेजी हैं, कह रहे हैं कि पुराने दिनों की याद दिलाता है एक छोटा सा डिब्बा जो सबको पसंद आता है। हर सुबह जब सूरज निकलता है रेडियो पर गाने का दौर चलता है। क्या बात है, बहुत खूब। आगे कह रहे हैं, खबर हो देश की या मौसम का हाल, रेडियो के पास होता है हर एक सवाल। आई थिंक आप कहना चाहते हैं हर एक सवाल का जवाब। क्या बात है, बहुत खूब हितेंद्र जी। और आपने एक गीत सुनना चाहा है, ये है फिल्म राजा हिंदुस्तानी का परदेसी परदेसी। तो आपकी नज़र ये खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों आपको मेरे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, आप अपने सुझाव शिकायत हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ईमेल आईडी है, नोट करें, हमारा ईमेल आईडी है feedbackfmrainbow@gmail.com। जी हाँ, feedbackfmrainbow@gmail.com। और सुनना न भूलें, हर महीने के तीसरे शुक्रवार को दोपहर 1 बजे प्रोग्राम बिंदास बोल। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, कहीं में जाइए, हम उपस्थित हो रहे हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: आज फिर लेट हो गए?
2: अरे यार, वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं।

0: कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों अगली फरमाइश हमें मिली है, ये है कविता देवभूमि उत्तराखंड से। तो कविता जी सुनना चाहती हैं बोले मेरे कंगना गीत फिल्म बंदिश दे। तो कविता जी आपकी पसंद का ये गीत आपकी नजर।

दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास आई है, ये है प्रदीप सलूजा और ये है संगीता सलूजा जनकपुरी ने दिल्ली से। ये कह रहे हैं कि ये फिल्म जब वी मेट से गीत सुनना चाहते हैं तुमसे ही, तो लीजिए प्रस्तुत है आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: ब्रेक के बाद पुनः आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। ये अगली फरमाइश आई है सीमा की हमारे पास मेरठ से। सीमा जी सुनना चाहती हैं फिल्म अर्पण का एक खूबसूरत गीत, परदेश जाके परदेसिया। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

और दोस्तों अगली पसंद ये आई है सुनीता शर्मा की शालीमार बाग दिल्ली से। तो ये सुनीता जी सुनना चाहती हैं सलामी फिल्म का गीत चेहरा क्या देखते हो। तो पेश खिदमत है आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

दोपहर के 2 बजे हैं और पेश है इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग, इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ आबी अहमद अली और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख

से गुआंगझो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक व्यापार को सुचारू बनाए रखने के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति मार्ग और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। बिहार के 14 जिलों के 2000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश के लिए तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित करने में सफलता। और महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। ये थे इस घंटे के FM रेनबो मुख्य समाचार।

वाणी आकाशवाणी। ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। आज के आशियाना प्रोग्राम में बात म्यूजिक एंड मूड की। सो लेट्स बिगिन कुछ एक्साइटिंग म्यूजिक के साथ। आज का ये शो आप हैं शाहिद के साथ।

102.6 यह देश का नंबर 1 रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम। आप सुन रहे हैं मेरे साथ आशियाना, म्यूजिक एंड मूड है आज का टॉपिक। मेरा नाम है शाहिद। म्यूजिक हैज अ मैजिक, संगीत में ऐसा जादू होता है जो एक पल में मूड बदल देता है। कोई गाना आपके दिल को छू जाता है, कोई धुन आपको यादों के समंदर में गोते दिला देती है। अगर उदास हो तो दर्द भरा कोई गीत उस दर्द का हमदर्द बन जाता है। खुशी के मौके पर कोई बीट पब्लिक प्लेस में भी शौक और चंचल आपको बना देती है। ऐसा ही है संगीत का ये जादू। तो आज ऐसा ही कुछ म्यूजिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ताकि आपके मूड को कुछ थोड़ा अलग सा एहसास करवाऊं।

Music is not just magical, but a therapy too. ये आपको ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां दिल की धुन कहती है एनीथिंग इज पॉसिबल. आपके वजूद को एनर्जी से भर देता है और कुछ अल्फाज आपको जिंदगी के खूबसूरत रंग से रूबरू करा देते हैं. आपके लिए मोटिवेशन का जरिया बनते हैं, आपको आगे बढ़ने का हौसला भी देते हैं. बारिश का मौसम, गर्म चाय का कप और बैकग्राउंड में कोई खूबसूरत सी धुन, यही तो है असली थेरेपी. और ये थेरेपी अभी दे रहे हैं लकी अली, ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सुर.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: आज फिर लेट हो गए?
3: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
2: क्यों बैठे थे बाहर?
3: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं, बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
3: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

अगर दिन की शुरुआत किसी एनर्जेटिक गाने से हो जाए तो सारे दिन सारा दिन को रोशन करने के लिए और जोश से भर देने के लिए वो काफी होता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऑफिस कि सुबह सवेरे रश आवर शुरू होने से पहले जब आप ऑफिस या मैं स्टूडियो के लिए निकलता हूं तो ड्राइविंग सीट पर बैठते ही पहले म्यूजिक ऑन होता है और फिर न सिर्फ वो रास्ता और वो सफर हसीन हो जाता है बल्कि मंजिल पर पहुंचकर वो काम जो मैं करने आया था फन भी बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं म्यूजिक एंड मूड की। आप सुन रहे हैं शाहिद को।

0: आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री

हीरो से बहुत ही खूबसूरत टाइटल ट्रैक अरमान मलिक की आवाज। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, मेरा नाम है शाहिद और यह देश का नंबर वन रेडियो आपका अपना रेनबो प्रोग्राम आशाना। आज हम बात कर रहे हैं म्यूजिक एंड मूड। When the heart breaks, music becomes your friend. और ऐसा कोई नहीं जो इस दौर से गुजरा नहीं, और ये जरूरी भी नहीं कि सिर्फ इश्क उसकी वजह बने। प्रोफेशनल फेलियर्स, अपनों के साथ कोई मन मुटाव, दोस्तों से किसी मुद्दे पर बहस या नाराजगी, या कहीं सिर्फ डिफरेंसेस ऑफ स्टैंड्स और ओपिनियन जो आपको तन्हा कर दें या इमोशंस से भर दें, तो ऐसे में कुछ खास म्यूजिक आपका साथी बन जाता है और आप भी, आपकी फीलिंग्स को भी गीतों के जरिए से बाहर निकलने का मौका मिलता है। और जब आप उन फीलिंग्स को महसूस करते हैं तो आप भी रिलैक्स्ड और हल्का महसूस करते हैं। Like this beautiful track from Aashiqui 2, Palak Munjal aur Arijit Singh ki awaaz।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Mangal Bhavan, Mangal Hari.
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
6: Sagar ki gehraiyon se पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

क्या आपको वो गाने या धुने याद हैं जो आपने बचपन में सुने थे, भले ही वो ना याद हों, लेकिन अपने फेवरेट कार्टून शो की थीम या उसकी जिंगल जरूर याद होगी। ये वो सारी यादें हैं जो केवल एक धुन के जरिए हमें हमारे बचपन में ले जाती हैं, और ऐसा ही म्यूजिक का जादू होता है जिसके साथ दुनिया से लेकर आसमान की बुलंदियों तक का सफर हम तय कर लेते हैं। भूली बिसरी याद एक गीत की इस जरा सी धुन सुनकर हमारी आंखों के सामने जिंदा हो जाती है, और वो मंजर हमारे सामने ऐसे आ जाता है कि जैसे अभी अभी हमारे सामने से गुजरा हो। म्यूजिक इज जस्ट मैजिक एंड इट हील्स टू, बिकॉज म्यूजिक इज नॉट ओनली मैजिकल बट इट्स अ थेरेपी।

आशियाना के इस शो में मेरे साथ इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा 4 बजे अल्फाजन के साथ। और आगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
3: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में। दोस्तों, आज रेडियो डॉक्टर में हम बात करेंगे फर्स्ट एड एंड कॉमन इमरजेंसीज, और हमारे एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर राकेश गर्ग, प्रोफेसर पेन एंड पैलेटिव केयर मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और आपकी एंकर मैं सुजाता रथ। दोस्तों, किसी भी इमरजेंसी या दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता आने से पहले प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड अत्यंत सहायक होती है। मरीज की जान बच सकती है और मरीज ट्रॉमा या पैनिक की स्थिति से सहजता की स्थिति में लाया जा सकता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि दुर्घटना या इमरजेंसी की अलग अलग परिस्थितियों में हमारा फर्स्ट एड क्या हो सकता है। फर्स्ट एड एंड कॉमन इमरजेंसीज, यही विषय है हमारा आज का रेडियो डॉक्टर में। चलिए पहले एक गाना सुनते हैं और उसके बाद मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर राकेश गर्ग से।

0: जी हाँ, आज रेडियो डॉक्टर में हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट एड एंड कॉमन इमरजेंसीज पर। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राकेश गर्ग, प्रोफेसर पेन एंड पैलेटिव केयर मेडिसिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और मैं आपकी एंकर सुजाता रथ। डॉक्टर साहब स्वागत है।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड एंड कॉमन इमरजेंसीज, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इमरजेंसीज किन किन स्थिति में पैदा हो सकती है। सर
1: सुजाता, आप जो आज का टॉपिक आपने चूज किया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो उसको ही समझना होगा। हम जब इमरजेंसी बोलते हैं इसका मतलब उस दौरान कुछ भी ऐसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको इमीडिएट मैनेज करना होता है। यूजली हम सोचते हैं कि हॉस्पिटल ले जाएंगे, वहां मैनेज करेंगे, बट हॉस्पिटल ले जाने में भी कुछ समय लगेगा, तो उस समय को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो एक आम नागरिक, कोई भी व्यक्ति, उस फर्स्ट एड को अगर प्रोवाइड किया जाए तो सारी एक इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाती है। जैसे एग्जांपल अगर हम आपको दो कि कोई खाना खा रहा है, गले में कुछ फंस गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, थोड़ा स्किड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्सीडेंट होने की स्थिति हो जाती है, हड्डी टूट गया, एकदम ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। आप सोचिए, ऐसे व्यक्ति को अगर आप अस्पताल ले जाएंगे जिसको ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप अगर एक आप साधारण सा एग्जाम्पल दूं कि अगर आप एक 5 लीटर की टैंकी ले लीजिए और उसमें छोटा सा नीचे छेक कर दीजिए और 15 मिनट में देखिए क्या होगा, टैंकी खाली हो जाएगा ना। अगर ऐसे हमारे शरीर से ब्लड निकलता रहा 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, तो ब्लड तो नहीं रहेगा तो जान जा सकती है। आज के मौसम में इंसेक्ट बाइट हो जाता है, आपने हार्ट अटैक का बात भी सुना होगा काफी जगह। तो सारी जो स्थितियां हैं, एक ऐसी स्थिति है जिसमें हर व्यक्ति को उसी समय जब चोट लगी है कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे एटलीस्ट उसकी जान ना जाए और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे तो जीवित पहुंच सके।
0: और डॉक्टर साहब, बरसात की आपने बात कही, तो आजकल हम बिजली गिरने की बहुत सारी वारदातें सुनते हैं, एक्सीडेंट सुनते हैं लाइटनिंग की, और साथ में घरों में इलेक्ट्रिक शॉक्स की भी हम बात सुनते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, ये हम सब आपसे जानेंगे सर, और हमारे लिसनर्स भी आपसे जुड़ेंगे। तो डॉक्टर साहब, कुछ कॉलर्स लाइन पर हैं, देखते हैं इनकी बात क्या कहना चाहते हैं ये। हेलो।
2: हेलो।
0: हाँ जी।
2: गुड आफ्टरनून मैम, गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ नई दिल्ली से।
0: हाँ जी।
2: डॉक्टर साहब को भी गुड आफ्टरनून।
1: नमस्कार।
2: सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा टॉपिक लिया है। डॉक्टर साहब, ये हर एक नागरिक का फर्ज है किसी भी दुर्घटना के समय जो घायल होता है या जो बीमार होता है उसकी सहायता की जाए, तो इसके लिए क्या कोई फर्स्ट एड का कोर्स होता है जिससे कि हमें ज्यादा जानकारी मिल जाए? दूसरा, फर्स्ट एड का कोर्स में जैसे DTC में कंडक्टर रखते हैं उसके लिए कंपलसरी है, तो कोई रोजगार के अवसर भी और भी हैं कोई क्या?
1: ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। हमारे भारतवर्ष में अगर हम भारत सरकार की बात करें तो वहां पर भी एक फर्स्ट एड का प्रोग्राम है, जो काफी जगह NGOs फर्स्ट एड की NGOs हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां के डॉक्टर्स ये कम्युनिटी सर्विस की तहत इस तरह के प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं अभी ऑलमोस्ट लास्ट 15 साल से इस तरह के प्रोग्राम्स करा रहा हूं, तो जगह जगह पे होते रहते हैं। इसका कभी कभी सोशल मीडिया में एडवर्टीजमेंट में भी आता है, बट आप जो भी आपके अस्पताल, कोई अच्छा सा अस्पताल आपके आसपास है, वहां के डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये फर्स्ट एड का प्रोग्राम आपको करा पाएंगे। और ये यूजली 5 से 6 घंटे का प्रोग्राम रहता है जिसमें सारे के सारे फर्स्ट एड इमरजेंसी जो हम अभी बात कर रहे थे, सुजाता जी अभी आपसे भी बात कर रही थी, उसको हम सारा उसमें कवर करते हैं। जहां तक रोजगार का सवाल है, ये एक कम्युनिटी सर्विस है, तो ऐसा नहीं समझिएगा कि फर्स्ट एड का प्रोग्राम करने के लिए

0: आपने सुना होगा कि कुछ साल पहले एक बिल और एक लॉ बना था जिसको गुड सैमरिटन लॉ कहते हैं। इसके तहत अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। जब भी आप उसको दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाते हैं तो जैसे पहले था कि आप अपना नाम या आपको अपना पहचान पत्र दिखाना आवश्यक होता था, अभी ऐसी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप उस व्यक्ति को अस्पताल में छोड़ के विदाउट डिस्क्लोजिंग योर आइडेंटिटी आप उस अस्पताल से जा सकते हैं, आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा। पर साथ में मैं आपसे यह भी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप फर्स्ट एड को अच्छे से सीखें। आप मदद तो कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें अगर आप फर्स्ट एड को टेक्निकली सीख जाएंगे तो आप और अच्छी मदद कर रहे हैं। आप चिंता नहीं करें, आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं होगा।
1: कॉलर है सर, हेलो
2: मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: डॉक्टर साहब नमस्कार
0: जी। नमस्कार जी,
2: मैं अमीन भाई, रेडियो वाला, सिरोही सिलोनी जिला गाजीपुर। सर मैं जानना चाह रहा था, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हम देखते हैं उसके सर में चोट लग जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो हम उसको किस स्थिति में रखें, जैसे कि लिटाएं या उसको बैठा के रखें, थोड़ा
0: बिल्कुल। अक्सर हमने अभी बात ही कर रहे थे कि सुजाता जी बोल रही थी कि बारिश के समय में गाड़ियां स्लिप हो जाती है, कई बार हम सीढ़ियों से उतरते होते हैं तो पैर स्लिप कर जाता है पानी के मौसम में और सिर पे हाथ पैरों में चोट लग जाती है जहां से ब्लीडिंग होती है। ध्यान रखिए, जब भी चोट लगती है सबसे पहले आप किसी सुरक्षित स्थान पर लिटा दीजिए, क्योंकि हो सकता है ब्लीडिंग इतना ज्यादा हो कि अगर बैठेगा तो उसको चक्कर आने शुरू हो सकते हैं, तो उसको एक किसी भी सुरक्षित जगह उसको लिटा दीजिए। क्योंकि कई बार अगर रोड के बीच में एक्सीडेंट हुआ है तो दिक्कत हो सकती है, तो रोड के थोड़ा साइड में ले जाके एक सुरक्षित स्थान पर लिटाइए उसको और उसको सांत्वना दीजिए, बिकॉज वो चिंतित होगा कि चोट लग गई है, उनको कोई मदद करने वाला है कि नहीं है, एक उसको रीअश्योरेंस कीजिए। और अगर जहां से भी ब्लीडिंग है, हम सभी के पास एक रुमाल, दुपट्टा, चुन्नी, कुछ एक कपड़ा तो हमारे पास होता ही है ना, शर्ट भी पहनते हैं, बनियान, जो भी आप ले लीजिए, जहां पर भी चोट है और खून निकल रहा है वहां पर उस कपड़े को रख के अपने दोनों हाथों से उसको प्रेस करके रखना है कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए। आप बीच बीच में कोशिश नहीं कीजिए कि 1-2 मिनट बाद दोबारा बार बार देख रहे हैं कि ब्लीडिंग रुका कि नहीं, नहीं, 8 से 10 मिनट के लिए उस जगह को अच्छे से प्रेस करना है। एक हाथ ऊपर रहेगा, एक हाथ दूसरी तरफ रहेगा ताकि प्रेशर अच्छे से बना रहे, और उसके बाद उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचा दीजिए। वहां पर डॉक्टर्स देख लेंगे कि आगे का इलाज किस तरह से करना है, कि उसमें टाके लगाने हैं, पट्टी लगानी है, वो उनका रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि उस जगह पर काफी गंदगी है, मिट्टी विट्टी लग गई है, जैसे बरसात के मौसम में तो अक्सर रहेगा ही, तो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल पानी, साबुन पानी से उसको अच्छे से वॉश कर दीजिए और फिर उसको कॉटन से कवर करके आप उसको अस्पताल ले जाइए। अगर आप इतना करेंगे तो मैं आपको इतना तो आश्वस्त कर सकता हूं कि खून बहने की वजह से उस व्यक्ति की जान जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और हमने अक्सर देखा है कि इस तरह के व्यक्ति, स्पेशली जिनको सिर में चोट लगी है या पैर में चोट लगी है और खून आ रहा है, तो काफी समय इन व्यक्तियों की जान सिर्फ इसीलिए चली जाती है कि उनका एक बहुत मेजर हिस्सा खून का रास्ते में बहा जाता है। तो जैसे हमारे शरीर के अंदर तकरीबन 5 लीटर ब्लड होता है, उसमें से अगर 1.5-2 लीटर भी चला जाएगा तो उसकी जान जाने की संभावना पड़ जाती है। और इसको रोकने का इलाज बिल्कुल सिंपल है, कोई भी कपड़ा प्रेशर लगाइए और अस्पताल ले जाइए, इससे हम काफी व्यक्तियों की जान बचा सकते हैं
1: जी। एक और कॉलर है सर, हेलो।
3: हेलो,
1: हाँ जी,
3: सुजाता रथ मैडम जी को मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: डॉक्टर साहब को सागर प्रणाम।
0: प्रणाम जी,
3: रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, सुभाष नगर, नई दिल्ली 27 से। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि अक्सर देखने में आता है कि जब रोड एक्सीडेंट होता है तो एम्बुलेंस को कॉल जब करते हैं, एम्बुलेंस बड़ी देर से आती है, अगर हम PCR को कॉल करते हैं तो वो हमारी सहायता करते हैं तुरंत, तो उसमें एक फायदा ये भी होता है कि वो कोई केस रजिस्टर्ड नहीं करते हैं जिसने कॉल की हो, और दूसरा पेशेंट को तुरंत एड मिल जाती है, फर्स्ट एड, जो इमरजेंसी एड जो टॉपिक है आज का, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: नहीं, आपका बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि जैसे अभी हमारे पहले श्रोता भी चिंतित है ना कि अगर उनके अगेंस्ट कोई पुलिस एक्शन तो नहीं लेगा, तो सब पुलिस महकमे को पता है कि जो मदद करना चाहता है उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता, इनफैक्ट उनकी आइडेंटिटी भी नहीं पूछी जाती है, और सभी पुलिस वाले जितने भी हैं उनकी ट्रेनिंग भी होती है फर्स्ट एड में, फर्स्ट एड के लिए उनको ट्रेन किया जाता है, तो जरूर मदद करते हैं वो। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि हम हर नागरिक क्यों ना फर्स्ट एड करें, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाकर हम अपने कम्युनिटी के अंदर, अपने पड़ोसियों के साथ, स्ट्रेंजर भी होते हैं, क्यों ना हम उनकी मदद कर सके, थोड़ा सा फर्स्ट एड सीखें। सरकार की तरफ से हमें बहुत सारी मदद मिलती है, जहां तक एम्बुलेंस का सवाल है, आप देख ही रहे हैं ना कि ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि जहां से भी उनका स्टेशन रहेगा एम्बुलेंस का, वहां से जाने में समय लगता है, तो इस समय की वजह से ही हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति फर्स्ट एड सीखे। जब तक आपको मेडिकल हेल्प मिलती है, चाहे वो PCR की वैन से है, चाहे वो कैट्स एम्बुलेंस से है, चाहे वो और कोई भी एम्बुलेंस है, वो जो समय है आपके पास 10-15-20 मिनट का, उसमें आप छोटी छोटी चीज करके, जैसे मैंने बताया अभी चोट के लिए, और आगे वाले थोड़े मिनटों में हम और भी कुछ बातें

0: करेंगे तो वो छोटी छोटी चीज करके आप किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। तो आप सभी कर सकते हैं, तो जब तक एम्बुलेंस आएगी मदद कीजिए, और जैसी एम्बुलेंस आती है तो वहां पर वो व्यक्ति की आगे की देखभाल वो करेंगे।
1: जी, तो डॉक्टर राकेश गर्ग हमारे साथ हैं जो हमें बता रहे हैं फर्स्ट एड एंड कॉमन इमरजेंसीज के बारे में। डॉक्टर साहब की पसंद का एक गाना हम यहाँ पर सुनेंगे और उसके बाद लौटेंगे रेडियो डॉक्टर में।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड एंड कॉमन इमरजेंसीज के बारे में। एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राकेश गर्ग, प्रोफेसर पेन एंड पैलेटिव केयर मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और साथ में मैं सुजाता रथ। डॉक्टर साहब, एक मैसेज है देहरादून से आलोक पवार जी का। लिखते हैं कि सड़क हादसे में किसी की हेड इंजरी हो जाती है और अस्पताल दूर होता है, तो ऐसे में सर क्या फर्स्ट एड देना चाहिए?
2: यूजली रोड एक्सीडेंट्स के अंदर अगर आप देखें, हाई स्पीड एक्सीडेंट्स होते हैं तो कहीं पर भी इंजरी हो सकती है। और हेड इंजरी की बात करें तो उसमें अगर ब्रेन के अंदर इंजरीज है तो फर्स्ट एड का संभावना वहां नहीं रहेगी, वहां जितनी जल्दी उसको हॉस्पिटल ले जाना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन साथ

0: इनके बार कई बार क्या होता है कि एक्सटर्नल इंजरीज की वजह से ब्लीडिंग काफी होती है, तो उन अगर ब्लीडिंग को रोकेंगे तो जो अंदर ब्रेन की इंजरी हुई है अगर उसको ब्लड भी कम जाएगा तो वो इंजरी और ज्यादा बढ़ सकती है, उसके नुकसान बढ़ सकते हैं। तो एक्सटर्नल इंजरी जो है उसको आप प्रिवेंट करें। दूसरा, यूजली क्या होता है कि आपने देखा है काफी टाइम की किसी व्यक्ति को अगर चोट लगती है तो हम उसको कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली बोलते हैं थोड़ा पानी पी लीजिए आप।
1: एक क्वेश्चन भी आया इस तरह का, सुधीर सिंह ने लिखा है कि क्या ऐसे एक्सीडेंट्स के समय पानी पिलाना चाहिए।
0: बिल्कुल, ये क्वेश्चन सुधीर जी आपने बिल्कुल सही पूछा है। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं और बहुत स्ट्रांगली कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को जिनको चोट ग्रसित हुई है, कोई भी चोट लगा हुआ संभावना ज्यादा लगती है, तो उनको मुंह से कुछ खाने पीने का मत दीजिए जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोलते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कई बार क्या होता है, जैसे आपने बोला कि हेड इंजरी हुआ, ब्रेन इंजरी हुआ, तो कई बार उनको वॉमिटिंग हो सकती है, वो थोड़े से बेहोश हो सकते हैं। अगर वैसे वॉमिटिंग हुआ तो सारा जो खाना पानी है वो फेफड़ों में चला जाएगा और उसको ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है जिससे उसकी जान जा सकती है। तो किसी भी व्यक्ति को मुंह से पानी पिलाना या मुंह पे पानी का छींटा डालना या कुछ खाने पीने के लिए देना, अगर आपको लगता है कि चोट ज्यादा है, वो थोड़ा सा बेहोशी की हालत में है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए।
1: तो ये बात तो स्पष्ट होगी कि जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कभी भी कुछ पिलाना नहीं चाहिए, पानी नहीं पिलाना चाहिए और खिलाना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बार कई बार होता है जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं और घरों में चारपाई से नीचे गिर जाते हैं, अक्सर हम देखते हैं खेलते खेलते और उनके सर पे चोट आ जाती है, तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए सर?
0: जहां तक हम बच्चों का खेलते हुए तो गिरते रहते हैं, बट गॉड हैज गिवन अ क्वाइट फ्लेक्सिबल बोन टू देम, उनको अक्सर फ्रैक्चर्स वगैरह नहीं होते हैं अगर वो बैट से गिर भी जाते हैं, क्योंकि बोन थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, उनका फैट पैड अच्छा होता है तो चोट कम लगती है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि नीचे कुछ ऐसी चीज रखी हो जिनके हो जाते हैं, आपने देखा कि सिर पर लगता है तो वहां थोड़ा सा एकदम से फूल जाता है, तो अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो वहां से ब्लीडिंग इकट्ठी हो जाती है, तो वहां पर जैसे मैं आपको पहले बता रहा था ना ब्लीडिंग के लिए, तो जहां भी आपको लगता है कि उसको इम्पैक्ट पड़ा होगा, अगर बच्चा सुस्त नहीं है, बेहोश नहीं हुआ हुआ, उल्टियां नहीं आ रही है, तो ये साइंस होता है कि इंटरनल इंजरी के, अक्सर बच्चों में नहीं होती है बट अगर बहुत ऊपर से गिरे तो हो सकती है, यूजली एक्सटर्नल इंजरी रहेगा जो आप जैसे आप बता रहे हैं कि वहां थोड़ा सा गुब्बारा सा फूल जाता है, उसको थोड़ा सा प्रेस करके रखिए अच्छे से 8 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि जो ब्लीडिंग अंदर हो रही है स्काल्प के अंदर वो प्रेशर से रुक जाएगी अपने आप, और बाद में थोड़ा सा आप आइस लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिए काफी टाइम होता है कि हम आइस को रब करते हैं, डायरेक्ट आइस नहीं लगाना होता, उससे स्किन डैमेज हो जाती है, तो उस आइस को एक किसी कॉटन कपड़े में अच्छे से रखिए और फिर उसको आप उस पर 8 से 10 मिनट के लिए लगा दीजिए, वहां जो स्वेलिंग होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और बच्चे को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। लेकिन साथ में हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी मैं आपको ये सारी चीजें अभी डिस्कस कर रहा हूं, अगर वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है या उल्टियां डालना शुरू कर देता है या रिस्पॉन्स नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति को एकदम तुरंत अस्पताल ले जाना बहुत बहुत जरूरी है।
1: कॉलर सेंसर, हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी,
2: गुड आफ्टरनून डॉक्टर।
0: गुड आफ्टरनून,
2: दिस इज क्लिफ्टन अल्मेडा फ्रॉम गोवा।
0: या प्लीज,
2: मेरा दो सवाल था। एक सवाल था, क्या अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं गाड़ी में तो क्या रिक्वायरमेंट है बिसाइड्स बैंडेजेस एंड ऑल इंक्लूडिंग मेडिकेशन? और एक सवाल है, वो बाद में पूछूंगा मैं।
0: जहां तक मेडिकेशन का सवाल है, अगर हम फर्स्ट एड की बात करें, तो अगर आप ये कहेंगे कि जो मेडिकेशंस आप रूटीनली लेते हैं, आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आपको नोजिएटिंग सेंट होता है, मोशन वीकनेस होता है, या आपको इस तरह की कुछ अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो आप मेडिकेशन अपने साथ कैरी कीजिए ट्रैवल में, क्योंकि जैसे अगर आप शुगर का मेडिकेशन रोक देंगे या ब्लड प्रेशर का रोक देंगे तो आपको ट्रैवल के दौरान बीपी बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकती है, दिक्कत होती है। तो ये एक तो हो गया कि आपकी ऑलरेडी प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस हैं, उसके साथ आपको ट्रैवल करना है। दूसरा ग्रुप, आप अगर पूछें कि हमारे पास ऐसी कोई किट है जो हम लेके चले, नहीं, फर्स्ट एड के लिए यूजली ऐसा कोई किट हम मेडिकेशन का यूजली सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप ये कैरी करके रखिए, क्योंकि कहीं भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप अगर कोई ऐसी दवाई है जो आप व्यक्ति को दें, क्योंकि आपको पूरा पता नहीं चलेगा कि उसको क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है, और वो जो दवाई देना चाहेंगे कई बार वो हार्म भी कर सकती है। तो अगर हम पूरे फर्स्ट एड का बात करें ट्रेवल के दौरान कि उसको उल्टियां लग गया है तो आपको दवाई पता है, लेकिन अगर चोट लग गई है, अगर इस तरह की दिक्कत आई है, तो वहां फर्स्ट एड में ऐसा कोई मेडिकेशन हम नहीं बोलते हैं कि उसको इमीडिएटली देना चाहिए, तो इस तरह का किट हम प्रिस्क्राइब नहीं करते। किट इज बेस्ड ऑन ओनली द पर्सन रिक्वायरमेंट एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, बट कभी कभी हम बोलते हैं जैसे अगर चोट लग गया तो एक टैबलेट दे दिया, वो सब चीजें रूटीन भी कर सकते हैं, बट और वो सब ट्रेवल के दौरान रखते भी अपने साथ, तो आप वो रेगुलर यूज कर सकते हैं, बट नॉट समथिंग वेरी स्पेसिफिक किट ऑफ मेडिकेशंस।
1: जी, दूसरा सवाल
2: डॉक्टर, दूसरा सवाल था, अगर ट्रेवलिंग करते हैं इमरजेंसी में बाय रोड, एयर और रेल, व्हाट इज द प्रोटोकॉल फॉलोड बाय द अथॉरिटीज बोलेगा।

0: ट्रेन में जाएगा तो अगर हार्ट अटैक आ गया तो हम लोग चेन पुल करते हैं, लेकिन बाकी सब काम अथॉरिटीज का क्या प्रोटोकॉल है जरा बता सकते हैं?
1: आई थिंक थोड़ा सा ये टेक्निकल सवाल हो जाएगा, लेकिन अगर आप, क्योंकि सब स्टेट्स का और सब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज का एक अलग अलग मेडिकल सिस्टम बेस रहता है, जैसे आप एयर से कर रहे हैं तो ऑल दी क्रू लेवल्स आर प्रॉपरली ट्रेन्ड फॉर द फर्स्ट एड एंड दे कम्युनिकेट टू देयर नियरेस्ट एयरपोर्ट एंड समटाइम दे डू इमरजेंसी लैंडिंग, और वहाँ हर एयरपोर्ट के अंदर एक रेस्क्यू मेडिकल टीम हमेशा रहती है एंड दे विल टेक ओवर। सिमिलर ये ट्रेन का रहता है, ट्रेन के अंदर भी जो आपके अंदर टिकट चेकर्स रहते हैं, गार्ड्स रहते हैं, अगर आप उनको इन्फॉर्म करेंगे तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो भी आएगा वहां पर भी एक मेडिकल टीम का ऑप्शन रहता है, फर्स्ट एड ऑप्शन रहता है, तो वहां से वो मिल जाता है। सिमिलरली अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो वहां पर नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट क्लिनिक या नियरेस्ट कोई भी हेल्थ फैसिलिटी रहेगा तो आप वहां पर गाड़ी पार्क करके यू टेक द फैसिलिटीज एंड टेक द ट्रीटमेंट फॉर वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। तो दिस इज अ वेरी ब्रॉड, आई थिंक आई कैन गिव एन फेयर आइडिया एंड इट डिपेंड्स अपॉन स्टेट टू स्टेट एंड प्लेस टू प्लेस।
0: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर
1: जी।
2: डॉक्टर साहब एक और कॉलर काफी देर से वेट कर रहे हैं। हेलो।
3: हेलो।
2: हाँ जी, लहरपुरिया साहब बोल रहे हैं।
3: डॉक्टर साहब को आदाब
1: जी, बताइए
3: जी। आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी। ये एक बार आपको फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ।
1: शुक्रिया,
3: शुक्रिया। और मेरा सवाल कोई नहीं है।
2: अच्छा।
3: जो बातें आपने बताई वो सब बहुत ही ध्यान से सुन रहा हूँ।
2: जी जी जी लहरपुरिया साहब जी, हम भी आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप रोज ये प्रोग्राम हमारा सुनते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो शुक्रिया के माध्यम से हो। डॉक्टर साहब एक व्हाट्सएप मैसेज लेते हैं और उसके बाद हम म्यूजिकल ब्रेक लेंगे। जैसा कि शुरू में आपने कहा था कि खाते समय यदि कुछ गले में अटक जाए, तो ऐसे एक सवाल आया है प्रकाश चंद्र जी का रोहिणी दिल्ली से कि व्हाइल ईटिंग इफ समथिंग स्टक इन योर थ्रोट क्या किया जाना चाहिए।
1: बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बिल्कुल एक्यूट इमरजेंसी होती है, क्योंकि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर 2 से 3 मिनट का ही होता है, और उस सांस लेने की जगह अगर खाना फंस जाए तो फिर तो सांस नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो 2-3 मिनट के अंदर हार्म हो सकता है। और काफी सारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट काफी सारी डिग्निटरीज इंडिया में ऐसी रही है जिनका इस वजह से डेथ भी हुआ है। बिल्कुल ध्यान रखना है। एक तो जैसे हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है ना, हम बोलते हैं ना, खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेट ऑन द फूड, डोंट सी द टीवी एंड वीडियो। सो एक इसमें एक सच्चाई तो है, बिकॉज हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, कुछ जल्दी से खाते हैं तो गले में फंसने का चांस रहता है। अगर फंस जाता है, 2 ऑप्शन होते हैं। अगर पार्शली फंसा तो आपने देखा कि खांसी आनी शुरू हो जाती है, तो आप उस व्यक्ति को रीअश्योर कीजिए कि आप खांसते रहिए, क्योंकि खांसने की वजह से वो फॉरेन बॉडी या खाने का जो भी पदार्थ है बाहर निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो खाने का पदार्थ है या फॉरेन बॉडी है पूरी तरह से फंस जाता है, उससे ना वो सांस ले पा रहा है और ना ही बोल पाता है, उसकी आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है और सांस लेने में बिल्कुल

अगर पार्शली फंसा तो आपने देखा कि खांसी आनी शुरू हो जाती है, तो आप उस व्यक्ति को रीअश्योर कीजिए कि आप खांसते रहिए, क्योंकि खांसने की वजह से वो फॉरन बॉडी या खाने का जो भी पदार्थ है बाहर निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो खाने का पदार्थ है या फॉरन बॉडी है पूरी तरह से फंस जाता है, उससे ना वो सांस ले पा रहा है और ना ही बोल पाता है, उसकी आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है और सांस लेने में बिल्कुल एक तरह से रुक जाता है। तो उसमें हम बोलते हैं हेमलिक मैन्यूवर। ये मैं उन्हीं व्यक्ति को बोलना चाहूंगा कि सब व्यक्ति कर सकते हैं, आम आदमी कर सकता है, बट थोड़ा सा सीखना होगा। एक किसी भी ट्रेन सुपरविजन में आप

0: को ठीक करना ठीक तरह से करना उतना ही जरूरी है ताकि इसका कोई हार्म नहीं हो और इसका बेनिफिट उस व्यक्ति को मिले।
1: डॉक्टर साहब, कई बार जब पानी पीते वक्त भी गले में पानी अटक जाता हो और बहुत परेशानी में होता है तो हम पीठ सहलाते हैं उस इंसान का, तो क्या वो सही है सर?
0: पीठ सहलाने से कुछ खास फायदा नहीं होगा। हम इसको बेसिकली एक रीअश्योरेंस बोलते हैं क्योंकि अगर खांसी कर रहा है तो वो जो थोड़ा बहुत पानी या कुछ फंसा निकल जाएगा। पीठ सहलाने से कुछ ज्यादा एडवांटेज नहीं होता। यू कैन जस्ट से इट हेल्प्स फॉर रीअश्योरिंग द पर्सन दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेल।
1: तो अब एक गाना सुनते हैं और उसके बाद हम पुनः लौटेंगे डॉक्टर राकेश गर्ग जी के पास।

0: Dr. Rakesh Garg, Professor Pain and Palliative Care Medicine, All India Institute of Medical Sciences. आज हमारे एक्सपर्ट हैं. रेडियो डॉक्टर में बातचीत चल रही है फर्स्ट एड एंड कॉमन इमरजेंसीज पर. डॉक्टर साहब, हमने कुछ एक मुद्दे तो उठा लिए, जैसे एक्सीडेंट के केसेस में क्या किया जाना चाहिए, हेड इंजरीज में क्या किया जाना चाहिए, अगर खाना अटक जाए गले में उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए. अब आते हैं अगर कोई जानवर आपको काट ले, डॉग बाइट है, मंकी बाइट है, तो इनसे इस स्थिति में ऐसा क्या किया जाना चाहिए?
1: बिल्कुल, एनिमल्स तो हमारे पूरे भारतवर्ष में मिलते रहते हैं, तो कभी कभी या तो हम उनको तंग करते हैं या वो किसी वजह से कभी बाइट कर सकते हैं उसमें. तो अगर कोई भी आप किसी भी इन जनरल एनिमल बाइट या मॉस्किटो बाइट या इंसेक्ट बाइट की बात करें, जब वो एनिमल काटता है तो वहां पर क्या चीज हो सकती है? एक तो ब्लीडिंग हो सकता है, दूसरा वहां पर इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा. तो आप उसमें क्या करना है कि जो भी कभी भी बाइट करे उस स्थान को अच्छे से साबुन पानी से साफ करना है, तो इन्फेक्शन का रिस्क हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा. कम से कम 8 से 10 मिनट चलते हुए पानी के अंदर अच्छे से साबुन से कई बार धोएं और बिल्कुल उसको साफ कर दें. अगर वहां पर ब्लीडिंग हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट मैंने शुरू में ही बताया कि कोई भी एक साफ कपड़ा लेके उस पर आप 8 से 10 मिनट के लिए प्रेशर करके रखेंगे और इसके बाद आप उसको चिकित्सक के ले जाएं. तो आपको यही करना है. काफी टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि लोग उस पर कभी टूथपेस्ट या चंदन का पेस्ट या मिट्टी का पेस्ट लगा देते हैं, तो उससे इन्फेक्शन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है. और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस वुंड को इंस्पेक्ट करने के लिए उसको सारा

0: की सफाई करना पड़ता है, जिससे मरीज को दिक्कत भी होती है। तो इस तरह का कोई भी पदार्थ उस चोट पर ना लगाएं और उसको एक साफ कपड़े से रख के अपने नियर जो भी आपके पास हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहां पर ले जाए।
1: डॉक्टर साहब, कई बार मधुमक्खी भी काट लेती है और उस जगह पर हम देखते हैं घरों में कहते हैं कि प्याज घिस के लगा लो और कोई घरेलू उपचार
0: मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे घरेलू उपचार अच्छे नहीं होते हैं जी। लेकिन कभी कभी हम उसकी वजह से उसको हॉस्पिटल ले जाने में देरी करते हैं, इंसेक्ट बाइट में इस तरह का यूज करते हैं, या कभी कोई आपने देखा मकड़ी काट जाती है तो कब भी इस तरह का लगाते हैं। तो मेरा सिर्फ उसको हमें सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, वही चीज बोलना चाहता जो मेडिकल प्रैक्टिस उस पर्सन के लिए सेफ है। अच्छे साबुन पानी से धोइए उसको, अगर आपको लगता है कि वहां स्टिंग्स दिखाई, आपने देखा कभी काटता है तो वहां आपको छोटे छोटे स्टिंग्स दिखाई देंगे, अगर वो दिखते हैं तो निकाल दीजिए उसको और उसको साबुन पानी से अच्छे से वॉश कीजिए। अगर ब्लीडिंग नहीं है तो जस्ट एक कपड़े से साफ कीजिए और उसको हॉस्पिटल ले जाइए। कुछ बाइट्स के अंदर अगर कोशिश कर सकते हैं, जैसे हम पहले बात कर रहे थे स्वेलिंग अगर आ जाती है, रेडनेस हो जाती है तो पेन का दर्द आता है, तो उसी तरह से आप कोई भी कोल्ड स्पॉन्ज कर सकते हैं, कोई ठंडा कपड़ा या फिर किसी ठंडे बर्फ को कपड़े के अंदर अच्छे से लपेट के, डायरेक्ट नहीं लगाना है इसको, मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, कपड़े में लपेट के उस जगह 8 से 10 मिनट के लिए लगाइए उसको, ताकि वहां उस व्यक्ति को दर्द भी कम होगा और सूजन कम आएगी।
1: डॉक्टर साहब, सूरज यादव ने बैंगलोर से पूछा है कि इन केस ऑफ पॉइजनस स्नेक बाइट व्हाट वन कैन डू इफ हॉस्पिटल फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल नियर बाय।
0: सो इसमें इम्पोर्टेंट है क्योंकि पॉइजनस स्नेक की बात करें, वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के अंदर मेजोरिटी नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं और उसमें जो डेथ होती है ना वो हार्ट अटैक की वजह से होती है, सांप की वजह से नहीं होती है। बट लेकिन हम उसको फिर भी लाइटली नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि पॉइजनस स्नेक भी होते हैं। सबसे पहला जो मैंने बोला कि आप अपनी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को सांप काट के गया अगर आप उसके आसपास सांप है तो आपको भी काट सकते हैं। हम नहीं चाहते कि दो व्यक्ति हमारे पास सांप काटे हुए हो, तो आप उस सीन को सेफ रखेंगे। उसके बाद उस जिस जगह सांप काटा है उसको अच्छे से पानी से धोजिए, साबुन पानी से साफ रखिए, उस पर कपड़े रख दीजिए। कुछ चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो नहीं करनी होती है, जो काफी जगह सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, वहां पर एक लंबा सा चीरा लगा देते हैं किसी ब्लेड से ताकि लगता है कि जहर निकल जाएगा, इसका करने का कोई फायदा नहीं है। काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि उसको वहां से सक्शन कर ले, उस जहर को सूखने की कोशिश करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेशन इतना फास्ट होता है कि वो जहां जाना चला गया होगा जब तक आप उस व्यक्ति के पास पहुंचे। तीसरा, काफी टाइम देखने को मिला है कि जहां सांप काट जाता है उसके ऊपर वो टोने के बांध देते हैं, कपड़ा बहुत टाइट बांध देते हैं, उससे लगता है कि शायद जहर नहीं फैलेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि हमारा जो दिल है एक बार में 70 से 80 बार धड़कता है, तो एक मिनट के अंदर ही तो जहां से जो अब्जॉर्प्शन होना वो चला गया होगा, उस टोने के बांधने का फायदा नहीं होगा, टोने के बांधने का नुकसान हो सकता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया और आधा पौना घंटा वो बंधा रहा तो वो बैड डेड हो सकता है, वो हम ट्रॉमा ब्लीडिंग की भी बात करते हैं। तो टूने के इज नॉट यूजली सजेस्टेड अनलेस इज ब्लीडिंग ग्रॉसली, की पैर बिल्कुल कट गया तो उसमें आप लगा सकते हैं, बट रूटीनली सांप काटने पे नहीं लगाना। और उसको अस्पताल तो ले ही जाना है, क्योंकि जितनी जल्दी इनको एंटी विनम सीरम इनको मिल जाएगा उनके बचने की संभावना फॉर पॉइजनस स्नेक होती है। तो आप उनको ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एड दे दिया तो घर पे ही रखना है, चाहे वो कितना ही दूर हो आप उसको हॉस्पिटल जरूर ले जाइए
1: जी। तो कुछ और श्रोताओं ने भी सेम क्वेश्चन पूछा सर स्नेक बाइट्स का, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, आरपी शर्मा फ्रॉम सोनीपत ये पूछते हैं सर कि अगर कोई बच्चा सिक्का गले में फंसा ले तो क्या करे सर।
0: आई थिंक वरुण बड़े के हम बात कर रहे थे शर्मा जी, उसी का ये कॉन्टेक्स्ट है। हाँ। और ये इतना अनकॉमन में नहीं है। तो जहां तक हम बात करते हैं ट्रीटमेंट डॉक्टर्स की बात तो करते हैं, बट प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी भी है। कोशिश कीजिए कि बच्चों के हाथ पे ऐसी चीज ना आए जो मुंह में निकले, और अगर करते हैं तो उनको समझाइए कि मुंह में रखने की चीज नहीं है। तो बी एजुकेट योर किड्स नॉट टू पुट दीज स्मॉल थिंग्स इन टू योर माउथ, सो दैट दिस टाइप ऑफ मेजर कैटेस्ट्रॉफी शुड नॉट हैपन। सिक्का फंस गया तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगता है सांस में तकलीफ नहीं आ रहा है, बच्चा ठीक से सांस ले पा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको हॉस्पिटल ले जाइए, वहां पर उसको डॉक्टर्स हैं दूरबीन से उस सिक्के को निकाल देंगे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सिक्का सांस की नली में ऐसा टेढ़ा होकर फंस जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो हम जैसे आपको बात कर रहे थे ना हेमलिक मेनोवर एडल्ट्स के लिए, इसी तरह हम बच्चों के लिए भी बात करते हैं। उसमें हम उस बच्चे को, अगर बहुत छोटा बच्चा है 1 साल का 2 साल का, तो उसको हम हाथ पे रखते हैं और उसका सिर थोड़ा सा नीचे करके थपकी देते हैं कमर पर, सो डैट वो फॉरन बॉडी जो गले में फंसी हुई है शायद वो बाहर निकलने की कोशिश हो जाए। ये हमें यूज करना है जहां पर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अगर सांस बिल्कुल ठीक आ रहा है, कुछ नहीं है, तो फिर आप ये नहीं करेंगे, आप हॉस्पिटल ले जाइए, वहां पर वो दूरबीन से उसको निकाल देंगे।
1: जी कॉलर्स कुछ वेट कर रहे हैं। हेलो
2: हेलो
1: हाँ जी पूछिए साहब।

0: मैं एनजी त्रिपाठी फ्रॉम देहरादून।
1: हाँ सर पूछिए।
0: मैडम जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि जैसे खाना खाते समय सांस नली में खाना फंस जाता है, तो जनरली हम लोगों ने सुना है और करते भी है कि पानी पिलाओ उसको, पानी पिलाओ, तो वेदर इट इज राइट और नॉट?
2: त्रिपाठी साहब बिल्कुल जैसे मैं सुजाते जी ने पूछा भी था ना, जहाँ भी आपको लगता है ना कि मरीज को बहुत ज्यादा कुछ नुकसान होने की संभावना है, तो उसको मुंह से ना खिलाना है ना पानी पिलाना है। इसी तरह गले में अगर कुछ फंस गया है तो उस टाइम भी पानी नहीं पिलाना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि अगर कुछ जो चीज फंसी हुई है वो अपनी जगह से हिल सकती है, और जो जो रुकावट थी वो पहले अगर पूरी नहीं थी तो आपके इस खाने पिलाने की वजह से वो पूरी भी हो सकती है। तो जितने भी सीरियस कंडीशंस हैं, एक्सीडेंट है, ट्रॉमा है, गले में कुछ फंस जाता है, किसी को दौरे पड़ना शुरू हो जाता है, कोई ऊपर से गिर जाता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को मुंह से कुछ पिलाने खिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक डॉक्टर्स उनको देख ना ले और उनको लगता है कि ऐसा कुछ मेजर इश्यूज नहीं है।
0: नहीं, मैं डॉक्टर डाइनिंग टेबल पे आदमी बैठा हुआ है, खाना फंस गया है, उसकी बात कर रहा हूँ सर।
2: अगर खाना फूड पाइप में फंस गया तो वहां पर भी आपको उसको नहीं पिलाना चाहिए, पहले उसको देखिए कि वो किस वजह से अवॉइड
0: कर। ये भी कहते हैं उसको उल्टा उल्टा कर देना चाहिए, सर नीचे कर देना चाहिए तो निकल जाता है।
2: वो छोटे बच्चों के लिए हम बोलते हैं, छोटा बच्चा होता है उसके लिए करते हैं। अडल्ट के आप अगर कोई 50 किलो का व्यक्ति है तो उसको आप कैसे उल्टा करेंगे, उसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले
0: बताया।
2: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें साथ में समझना चाहिए कि एक बहुत छोटी सी चीज है जो हम सीख सकते हैं और हर व्यक्ति को आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ घर में खाना खाते वक्त या पार्टी टाइम में, तो हमें जो हमने शुरू में बात की थी ना हेमलिक मैन्यूवर, ये सीख सकते हैं और हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, ताकि ऐसी अगर कुछ दुर्घटना हो तो हम उस व्यक्ति की जान बचाने में मदद कर सकें। You should be relaxing and enjoy your food properly rather than doing some other work. Thank you so much.
1: Thank you, sir. सर एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद शायद हम ब्रेक लेंगे। ये नाम नहीं लिखा है इन्होंने, और इन्होंने पूछा अगर आपकी आंख में कुछ गिर जाए या कान में कुछ फंस जाए तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए?
2: बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजली कई बार कुछ केमिकल्स ऐसे होती है जो गैसेज होती है, आप कुछ काम कर रहे होते हैं वो आंख में चला जाता है, उससे आपकी आंख की रोशनी भी जा सकती है। सबसे पहले यूजली स्किन पे भी जा सकती है। काफी टाइम हमें से सोचते हैं कि अगर एसिडिक चीज है उस पर थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए, नमक है तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एसिड से भी नुकसान करना है और अल्कली से भी करना है, तो आप उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, अगर कुछ पाउडर्ड फॉर्म है तो पहले उसको कपड़े से साफ रखिए, उस कपड़े से उसको झाड़ दीजिए, क्योंकि आपके आसपास वो पाउडर का फॉर्म होगा। अगर वो पाउडर सारा निकल गया है और अगर लिक्विड फॉर्म में है, तो आपको कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए कोई भी साफ पानी से जो आप पीने लायक होता है उसको आंख को धोते रहना, अच्छे से धोते रहना, ताकि आपको लगे कि वहां से सारी चीज निकल गई है। और फिर कोई भी एक साफ कपड़ा आंख पर रख के आसपास जो भी चिकित्सक है, नेत्र चिकित्सक है, उनको एक बार दिखा दीजिए, वो चेक करेंगे कि कितना नुकसान अंदर हुआ है और उसके अनुसार वो आपको कुछ ड्रॉप्स या दवाई देंगे, उसको जारी रखना है। तो आपके लिए सिर्फ इतना है कि सारे पाउडर या इस तरह का उसको साफ रखें और पानी से 10 से 20 मिनट तक साफ पानी से जो पीने लायक है उससे आंख को धोते रहिए और उसको अस्पताल ले जाइए उस व्यक्ति को।
1: जी।

0: कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं सर। ये साहब कौन है? हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी।
1: मैं क्या ये माधव बोल रहा हूँ आपसे। हेलो मैडम।
0: हाँ बोलिए बोलिए।
1: नमस्कार आपको डॉक्टर साहब को।
0: हाँ नमस्कार।
1: मैंने देखा एक्सीडेंट होने के बाद
2: आपका बिल्कुल
0: लाइन क्लियर नहीं आ रही है।
2: सवाल दुरुस्त है। ये बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद अक्सर लोग वीडियो बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पे करते हैं। आई थिंक आपने काफी अच्छा एक मैसेज हमको दिया है कि हम लोगों को फर्स्ट एड सीखना चाहिए और हर दुर्घटना वाली स्थिति के अंदर हम उस व्यक्ति की जितनी भी मदद कर सकते हैं बगैर टाइम को वेस्ट कीजिए बिल्कुल करना चाहिए। आपके इस सुझाव से हम बिल्कुल सहमत हैं और गुजारिश यही है कि सभी लोग दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जल्दी से जल्दी मदद करें।
0: जी डॉक्टर साहब, कीड़े मकोड़ों के इंसेक्ट बाइट्स की भी आपने बात कही तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह कह रहे कि बिच्छू डंक मारे तो क्या किया जाना चाहिए।
2: सभी अगर हम बात करें जितने भी हम इंसेक्ट बाइट करते हैं उसमें जो स्ट्रिंग्स अगर आपको दिखते हैं तो उसको निकाल दीजिए, अच्छे से साबुन पानी से वॉश कीजिए और किसी कपड़े के अंदर अच्छे से कपड़े के अंदर बर्फ रख के उसको थोड़ा सा कोल्ड स्पॉन्जिंग कर दीजिए ताकि वहां पर दर्द स्वेलिंग नहीं हो। और ध्यान रखिए इस कभी स्थिति में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि एनाफाइलेक्सिस, ये तो हो गया कि आप फर्स्ट एड कर रहे हैं। अगर मरीज को सांस लेने में एकदम से तकलीफ पड़ गया, एकदम से उसको घबराहट होनी शुरू हो जाती है, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है तो इसको हम एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। तो अगर व्यक्ति को ये कोई भी सिम्टम्स है उसको तुरंत की तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। फर्स्ट एड मैंने आपको बताया और हॉस्पिटल कब ले जाना वो हमने बताया, उसका आपको ध्यान रखना है।
0: तो डॉक्टर साहब बारिश के दिनों की हमने बात की और

0: हार्ट होनी शुरू हो जाती है, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, तो इसको हम एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। तो अगर व्यक्ति को ये कोई भी सिम्टम्स हैं, उसको तुरंत की तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। फर्स्ट एड मैंने आपको बताया और हॉस्पिटल कब ले जाना वो हमने बताया, उसका आपको ध्यान रखना है।
1: तो डॉक्टर साहब, बारिश के दिनों की हमने बात की और शुरू में जैसे मैंने कहा कि बादल फटने की और बिजली गिरने की बहुत सारी दुर्घटनाएं देखी जाती है, ऐसी स्थिति अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ हो जाए।

0: है तो आप उसको CPR करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर बेहोश हो जाता है उसको मुंह से कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, उसको नीचे लिटा दीजिए, देखिए मरीज व्यक्ति सांस ठीक से ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर हार्ट काम नहीं करता तो उसको मैनुअली हार्ट को कंप्रेस करना है, जिसको हम CPR बोलते हैं, और उसको तुरंत के तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाने की बहुत जरूरत होती है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि लाइटनिंग के साथ बारिश भी हो रही होती है, कपड़े सारे गीले हो जाते हैं, उसकी वजह से मरीज को अगर ठंड लगती है तो वो भी दिक्कत करती है। कोशिश कीजिए कि उसके सारे गीले कपड़े हटा के उसको थोड़ा सा साफ कपड़े से उसको ढक दीजिए, सो दैट वो जो नुकसान ठंडी की वजह से शरीर के अंदर हो रहा है उसको भी हम रोक पाएंगे।
1: जी। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और, जो घरों में अक्सर हल्के फुल्के बर्न्स हो जाते हैं, कई बार जलने की घटनाएं हो जाती है, कोई बॉइलिंग हॉट बॉइलिंग वाटर या दूध या कुछ भी गिर सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया
0: जाए? आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक द थिंग सिंपलर, बिकॉज हम कई बार सोचते हैं कि अगर कुछ एसिडिक चीज घर में गिरी है तो उसको एल्कली से साफ करें। वो मैं बता चुका हूँ कि आपको न्यूट्रलाइज नहीं करना है। इन सभी चीजों का जो एक ट्रीटमेंट है वो है उसको पानी से धोना। अब गर्म पानी, जब गर्म चीज करती है तो लोगों को लगता है कि फ्रिज का ठंडा पानी हम इस्तेमाल करें तो बेहतर करेगा। नहीं, गर्म चीज का दुष्प्रभाव और बर्फ का दुष्प्रभाव दोनों को ऐड कर रहे हैं। एनी रनिंग वाटर, जो कि चलता हुआ पानी, ऐसा नहीं कि बाल्टी में रखा हुआ हाथ डुबो के रखना है, कोई भी रनिंग वाटर 20 से 30 मिनट तक उसको धोते रहिए अच्छे से। अगर उस जलने की वजह से आपने देखा कि वह फफोले पड़ जाते हैं, वो हमारा एक नेचुरल, एक तरह से आप ड्रेसिंग कहते हैं, उसको फोड़ना नहीं है, काफी टाइम उसको फोड़ देते हैं कि उसको मरीज को तकलीफ हो रहा होगा, उसको फोड़ेंगे नहीं, एक साफ कपड़े से उसको ढक दीजिए। काफी टाइम हमने देखा कि जले व्यक्ति के अंदर कुछ लोग मुल्तानी मिट्टी या टूथपेस्ट लगा देते हैं, वो आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जब हम देखना चाहते हैं कितना डैमेज हुआ स्किन को या ड्रेसिंग करना चाहते हैं तो हमें वो खुरच खुरच के उतारना पड़ता है और स्किन खराब हो जाती है डॉक्टर्स के लिए, तो वो सारा मरीज को बहुत तंग करता है। सिर्फ 20 से 30 मिनट चलते हुए पानी से वॉश कीजिए, उसको सुखा दीजिए उसको अच्छे से, फफोले नहीं फोड़ेंगे। अगर बहुत दर्द है तो आप उसको क्रोसिन का टैबलेट दे सकते हैं, एक साफ कपड़े से ढक के नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाइए।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार बच्चों को या बड़ों को भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है सर, फ्रिज से या किसी भी दूसरी चीज से, तो उस स्थिति में क्या जाता है?
0: यूजली जो घर का जो करंट होता है यूजली वो इतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन जैसे पहले मैं आपको बता रहा था ना कि करंट का जो दुष्प्रभाव है वो शरीर के अंदर ज्यादा होता है, बाहर की तरफ कम होता है। उस करंट लगने के वक्त एक तो सबसे पहले है कि जिसको लग रहा है हो सकता है वो उस करंट के टच में ही है, तो जो भी आपका मेन जहां से सप्लाई आ रहा है उसको बंद कीजिए, आप उसको टच नहीं करेंगे। कुछ लोग डंडी भी यूज करते हैं, लकड़ी यूज करते हैं, बट अगर गीली होती है तो भी दिक्कत होती है। हर घरों में एक मेन स्विच होता है, उसको बंद कीजिए। जिस व्यक्ति को करंट लगा है उसको आराम से लिटा दीजिए, उसको देखिए क्या दिक्कत है, और अगर लगता है कि उसको कुछ घबराहट हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, अगर बोलता है दिल की धड़कन बहुत तेज है, अगर वो एकदम से बेहोश हो जाता है, इसका मतलब अंदर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव हुआ है। ये ऐसे सारे व्यक्ति को नियरेस्ट हॉस्पिटल जरूर ले जाना चाहिए, क्योंकि उनको मॉनिटरिंग में रखना पड़ेगा। कभी कभी उनको कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है, तो वहां पर उसको देखेंगे कि कैसे दवाइयां देनी है या CPR करना है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट रहेगा।
1: और डॉक्टर साहब, अब आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कि आजकल हम हार्ट अटैक के बहुत से केसेस देखते हैं और कोलैप्स हो जाता है, अचानक ये व्यक्ति जो कोलैप्स हो जाता है, ऐसा एक सवाल भी आया है प्रवीण का महाराष्ट्र से, कि हार्ट अटैक आने पर क्या किया जाना चाहिए, उसी के साथ हम प्रोग्राम को सुनाते हैं।
0: हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दो चीजें हैं। हार्ट अटैक मतलब छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है और उसको घबराहट लगती है, तो ऐसे व्यक्ति को नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाइए। यूजली देखा है कि ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं जल्दी से भाग के हॉस्पिटल चलो, नहीं, उसको रिलैक्स कीजिए, आराम से बिठाइए, सांत्वना दीजिए। अगर कोई दवाई पहले से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसको मदद कीजिए उसको लेने में, अपने आप कुछ नई दवाई मत दीजिए और उसको हॉस्पिटल ले जाइए। कार्डियक अरेस्ट नहीं है, ये हार्ट अटैक है। बट अगर ये बहुत तेज है तो इससे कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, मरीज एकदम बेहोश हो जाएगा, हार्ट काम करना बंद कर देता है। ऐसे स्थिति में हम बोलते हैं कार्डियोपल्मी रिससिटेशन CPR। मैन्युअली हार्ट को हम दबाने की कोशिश करते हैं सो दैट ब्लड सर्कुलेशन शरीर के अंदर बना रहेगा, तो CPR हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। और जब तक हम मेडिकल हेल्प हमारे पास नहीं आ जाती है, क्योंकि एम्बुलेंस की जरूरत तो पड़ेगी, तो उस समय तक हम CPR करते रहे। जैसे हमें मेडिकल हेल्प मिलती है इनको नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है।
1: सर एक और लास्ट क्वेश्चन, कि कई बार रास्ते में या कहीं पर भी व्यक्ति चक्कर खा के गिर जाता है सर।
0: यूजली काफी टाइम होता है कि हमने ठीक से खाना पीना नहीं खाया, बहुत स्ट्रेस में रहे हैं, तो हम बोलते हैं वेजोवेगल सिंड्रोम की काफी टाइम हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उस टाइम भी कुछ व्यक्ति को हो जाता है। भगवान ने हमारे एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाया है कि हम उस वक्त बेहोश होकर गिर जाते हैं, नीचे लेट जाते हैं, हमारे ब्रेन को सर्कुलेशन अच्छे से बनता रहता है और 10-20-30 सेकंड बाद फिर दोबारा से उठ जाते हैं, याद भी नहीं रहता है। तो वही चीज हमें भी करनी है। अगर किसी को इस तरह से है तो उसको आराम से लिटा दीजिए, उसको देख लीजिए कि वो सांस ठीक से ले रहा है कि नहीं, उसका कार्डियक अरेस्ट तो नहीं है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। अगर वो सब ठीक ठाक है यूजली 10-20 मिनट में हो जाएगा। बट ध्यान रखिए, अगर वो व्यक्ति उस वक्त बेहोश है, कुछ लोग देखा मुंह पे पानी भी छिड़कते हैं,

0: वो सब नहीं करना है जब तक वो होश में नहीं आ जाता। एक बार होश में आ जाएगा तो पूछ लीजिए, काफी टाइम ऐसा होता है डायबिटिक पेशेंट्स हैं, बहुत टाइम से खाया पिया नहीं है इसलिए वो बेहोश होकर गिर गए हैं, तो आप मदद कीजिए। होश में आने के बाद उनको मदद कीजिए, कोई दवाई वो ले रहे हैं या कुछ खाना पीना नहीं खाया है या पानी नहीं पिया है काफी टाइम से, जो कि गर्मियों के मौसम में अक्सर होता है, उसमें मदद कीजिए उसको कुछ खिलाने पिलाने में। बट मैं बोलना चाहूंगा जब वो होश में हो।
1: होश में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था आज का ये प्रोग्राम और बहुत सारी बातें सर हमको जानने को मिली एक आम नागरिक के तौर पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर राकेश गर्ग, प्रोफेसर पेन एंड पैलेटिव केयर मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और आज हमने बात की फर्स्ट एड एंड कॉमन इमरजेंसीज के बारे में डॉक्टर और मैं सुजाता रथ अब आपसे इजाजत चाहेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच एंड बी सेफ।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली कुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकु
3: मुझे।
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

शाम के 4 बज गए हैं। पेश है एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में भारत मंडपम में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र में कहा, ब्रिक्स ने पिछले 20 वर्षों में विश्व मंच पर अपनी पहचान स्थापित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान और वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग, इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ आबी अहमद अली और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक व्यापार को सुचारू बनाए रखने के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति मार्ग और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगझोऊ और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। बिहार के 14 जिलों के 2000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश के लिए तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यापित करने में सफलता। और महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। ये थे एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो
3: 102.6। ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम का। यहाँ पर समय हो रहा है अल्फा जेन, और आज के अल्फा जेन में हम बात करेंगे डिजिटल डिटॉक्स के बारे में। मेरा नाम है शाहिद और आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। लेकिन हम प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। आजकल के तेजी से बदलते जीवन शैली और खान पान के तरीकों में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही है। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग जैसी समस्याएं इनमें से कुछ है जो गंभीरता से नजर आ रही है। इस लम्हे प्रोग्राम में हम उच्च रक्तचाप और किडनी रोग के बारे में विस्तार से जानेंगे आपके आरजे चेतन से। यह हाइपरटेंशन किडनी डिजीज कारणों की चर्चा करेंगे और इनके प्रति उचित सचेतता फैलाने का प्रयास करेंगे। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, एक आम स्वास्थ्य समस्या है जिसमें रक्तचाप की स्तर मानक से अधिक होता है। ये एक स्थिति है जो धीरे धीरे विकसित होती है और आमतौर पर लोगों को पहले से ही पता नहीं चलता है। अगर यह समस्या नियंत्रित नहीं हो जाती है तो ये दिल, दिमाग, किडनी और अन्य शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकती है। उच्च रक्तचाप को अन्यथा हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह वह बल है जो मानव रक्त वाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ कार्य करता है। ये बीपी रक्त वाहिकाओं के प्रतिरोध पर निर्भर करता है और हृदय को कितना कठिन प्रदर्शन करना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों को ये समस्या होती है, लेकिन अनजाने में हम अपनी जिंदगी चला रहे होते। लेकिन अनुपचारित उच्च रक्तचाप से स्ट्रोक, हृदय रोग और कभी कभी मृत्यु हो सकती है। हाइपरटेंशन का मुख्य कारण अंतर्निहित चिकित्सा और मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है। ब्लड प्लाज्मा की मात्रा, हार्मोन गतिविधि, तनाव और गतिविधियों की कमी, क्रॉनिक किडनी रोग, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया, गर्भावस्था या कुशिंग सिंड्रोम को उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण माना जाते हैं। उच्च रक्तचाप को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये क्रॉनिक बीमारी है और 90% रोगियों में उच्च रक्तचाप का कारण अज्ञात होता है। इसे दवा के साथ और जीवन शैली और खाने की आदतों में कुछ संशोधन के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर नियमित चिकित्सा ध्यान देना है और अपने चिकित्सक के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होती है। किडनी रोग एक और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसमें किडनी की क्षमता मामूला से कम हो जाती है और ये सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण ये है दोस्तों, खान पान की गलत आदतें, अधिक नमक, अल्कोहल और अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है जो बाद में किडनी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। मानसिक तनाव और स्ट्रेस भी रक्तचाप में वृद्धि कर सकते हैं और किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मधुमेह से पीड़ित लोगों में उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्तचाप और

पहली समस्या आमतौर पर बढ़ती है अनियमित जीवन शैली, डिसऑर्डरली लाइफस्टाइल, अनियमित खानपान, व्यायाम की कमी और अत्यधिक वजन, ये सभी उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याओं के लिए प्राथमिक कारण बन सकते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन और किडनी डिजीज के कुछ लक्षण इस तरह हैं: बार बार पेशाब आना, पेशाब में रक्त आना, थकान, सिरदर्द, नजरों में धुंधलापन, पैरों और एंकल्स में सूजन। तो इसके लिए क्या करें? कम नमक खाएं, कम तेल और सुपर फूड्स का सेवन करें। फल, सब्जियां, पूरे अनाज, मखाने जैसे आहार उच्च रक्तचाप और किडनी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं।

उच्च रक्तचाप और किडनी रोग दोनों ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिनका समय पर पहचान और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, सही खान पान आदतें बनाना और नियमित चिकित्सकीय जांच से हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। साथ ही सचेतता फैलाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहिए ताकि लोग इन समस्याओं की ओर ध्यान दें और सही समय पर कदम उठाएं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जिसका सही समय पर इलाज किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ प्राकृतिक उपचार उच्च रक्तचाप के लिए काम करेंगे, जैसे स्वस्थ BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, नियमित व्यायाम, अतिरिक्त सोडियम को कम करना, चीनी और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना, धूम्रपान बंद करना और शराब का सेवन कम करना। अन्य उपाय जैसे संतुलित आहार खाना, तनाव कम करना, सांस लेने का व्यायाम करना और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग करना, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन का सेवन करना, प्राकृतिक सप्लीमेंट लेना। मुख्य रूप से प्राकृतिक उपचार खाते में गिना जाता है। तो दोस्तों, यह था हाइपरटेंशन और उसके असर अपने किडनी पर। इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करता है और यह किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह की जगह नहीं ले सकता है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। प्रोग्राम यहां शुरू हो गया है, अल्फा जेन शाहिद आपके साथ, और आज हम बहुत ही एक रिलेवेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर करेंगे आज के अल्फा जेन में बात। और आज का जो टॉपिक है वो है डिजिटल डिटॉक्स। तो किस तरीके से हमारी जिंदगी जो है वो मोबाइल, सोशल मीडिया और इन सब चीजों में उलझ करके रह गई है सुबह से लेकर के रात सोने तक, इस पर ही हम आज करेंगे बात कि कैसे किया जाए डिजिटल डिटॉक्स। सो स्टे ट्यून, लिसन रेनबो विद मी। मेरा नाम है शाहिद।

गुड मॉर्निंग हो या गुड नाइट, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बिना मोबाइल के, बिना सोशल मीडिया के, या कम से कम व्हाट्सएप के बगैर तो पूरा होता ही नहीं है। सुबह को उठते ही सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है अपने फ़ोन की तरफ और हम सबसे पहले चेक करते हैं कि व्हाट्सएप पर कौन कौन से क्या क्या मैसेजेस किस किस ने भेजे हैं, और अगर नहीं तो कम से कम स्टेटस ही चेक कर लो। फिर उसके बाद नंबर आता है इंस्टाग्राम और दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, और आप जगते ही बस शुरुआत कर देते हैं अपने डिजिटल दिन की। जब ये उसूल है ना, हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस चीज से थोड़ा सा दूर हों, ज्यादा नहीं तो कम से कम उठने के बाद कम से कम 10 मिनट का एक साइलेंट पीरियड आप गुजारें बिना मोबाइल के, टू डिटॉक्स एंड गेटिंग स्मूथली क्लटर फ्री रेडी फॉर द डे। और ये बहुत ही आसान है, सिर्फ कोशिश करने की बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप उठते ही सबसे पहले फोन ऑन करके सोशल मीडिया पर ना जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका दिन सही से शुरू ना हो, या आपका कोई काम बनते हुए बिगड़ जाए या कोई काम खराब हो जाए। तो ये जो अर्ज है आपकी, इसको कंट्रोल करना है कि सुबह उठते ही फोन उठाना है और स्क्रॉल करना शुरू कर देना है। बहुत ही बैडली और मैडली। फिलहाल बहुत ही खूबसूरत ट्रैक कुणाल गांजा वाले की आवाज। मेरा नाम है शाहिद, आप सुन रहे हैं 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो, आपका अपना रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Dil ke tarane, gaane naye purane. Non-stop film music rozana subah 9 se 10 baje tak. Rainbow 102.6 par.
3: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashwani. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
6: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
5: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
6: हैं इतनी जल्दी?
5: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
8: Yeah. Wanna feel that?

चॉकलेट से ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक सोनू निगम की आवाज, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, मेरा नाम है शाहिद। 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जेन, और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स, जो बहुत जरूरी है हम सबके लिए। क्योंकि हो क्या रहा है कि अब जब हम खाने की टेबल पर बैठते हैं तो भी हमारे हाथों में फोन्स होते हैं, यानी कि फैमिली टाइम जो होता है वो स्क्रीन्स पर ही गुजर रहा है, ना कि हम साथ में जब खाने की टेबल पर बैठते हैं तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं। हमारी जो डिनर टेबल्स हैं वो लगती हैं कि जैसे वो चार्जिंग स्टेशंस हैं। तो उसकी वजह यही है कि हर कोई जो उस वक्त बैठा हुआ है 90%, मतलब जो बुजुर्ग हैं शायद वो तो नहीं, लेकिन बाकी के जितने लोग हैं वो सब मोबाइल पर, स्मार्टफोन पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर स्क्रॉलिंग करते हुए नजर आते हैं और कुछ नहीं। तो हमें चाहिए कि हम अपने फैमिली को टाइम दें प्रॉपरली, और एटलीस्ट डिनर टेबल पर खाने के वक्त, खाने के समय तो हम कम से कम जरूर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, खाने को भी एंजॉय करें, और आपस में जो दिन भर की बातचीत है, जो दिन भर की एक्टिविटीज हैं, उन पर भी डिस्कस करें, और अपने फोन्स को कुछ समय के लिए अपने से दूर करें और कॉन्वर्सेशंस को वापस लाएं खाने की टेबल पर।

0: approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

अल्फजन में आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स के बारे में, जो कि बहुत जरूरी हो गया है आज के माहौल में। 102.6 आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फजन डिजिटल डिटॉक्स, मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद। याद है आपको बचपन की वो शामें, बाहर दोस्तों के साथ खेलना, उनके साथ प्रोग्राम्स के लिए भाग दौड़ करना, पार्क में जाकर के क्रिकेट खेलना, और वो सब दिन भर की फिजिकल एक्टिविटीज और मस्ती, साथ ही रेडियो पर गाने सुनना, याद है? और इसके अलावा बाकी लोगों का अपने पड़ोसियों के साथ किस तरीके से हर वक्त की बातचीत, लंबी लंबी जाने कहां कहां की बातें करना, वही तो था असली डिटॉक्स विदाउट एनी गैजेट। लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी फिलहाल हम लोग अगर कभी मिलते भी हैं, यार दोस्त भी अगर मिलते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी या बाहर खेलना कूदना तो पूरी तरीके से खत्म ही हो चुका है। अब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट भी नहीं करते हैं, बात भी नहीं करते हैं। हर किसी के हाथ में हाय हेलो के बाद अपना अपना फोन होता है और उस पर लगातार स्क्रॉलिंग। आपको जानकर हैरानी शायद नहीं होगी, क्योंकि अब ये बहुत कॉमन हो चुका है कि स्टडीज से ये बात साफ पता लगी है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम अगर आप गुजारते हैं, भले ही वो टीवी पर हो, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर हो, या आपके हर वक्त साथ में रहने वाले, हाथ में रहने वाले मोबाइल पर हो, तो ज्यादा स्क्रीन टाइम गुजारने की वजह से एंग्जाइटी बढ़ती है। यह है एक नई स्टडी। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स को शुरू कीजिए। बहुत मुश्किल नहीं है, हालांकि थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको शुरू में, लेकिन यह है सिर्फ डिसिप्लिन की बात, और साथ ही साथ डिसिप्लिन के अलावा यह है आपके पीस ऑफ माइंड की बहुत ही जरूरी बात। चलिए एक चैलेंज लेते हैं, वीकेंड डिटॉक्स चैलेंज। एक वीकेंड आप विदाउट सोशल मीडिया कर सकेंगे? क्या ये पॉसिबल होगा? कोई बैक टू बैक रील्स या शॉर्ट्स नहीं, कोई एंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं, बल्कि इसके बजाय आप कोशिश करेंगे फैमिली से कनेक्ट करने की, दोस्तों से मिलने की, विदाउट मोबाइल फोन्स इन बिटवीन, और साथ ही अगर हो सके तो कोई अच्छी किताब पढ़ने की। और उसके बाद शाम में आप निकलें एक वॉक के लिए, या और कुछ नहीं तो कम से कम एक छोटा सा नैप ले लें।

about screen time without your mobile phones. फिलहाल शाहिद का यहां पर हो रहा है टाइम खत्म. आगे हैं लेकर दीपिका सिटलाइट्स आपके लिए सिटी के अपडेट्स. आप सुनते हैं रेनबो दिल से दिल तक.

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र में कहा, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन से इतर वियतनाम, इथियोपिया, मलेशिया के अपने समकक्षों से द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री ने अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक व्यापार को सुचारू बनाए रखने के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति मार्ग और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। चाइना सर्दर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगझोउ और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहूदी नववर्ष रोश हशाना के अवसर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और यहूदी समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। और महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। ये थे अब तक के AIR मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस वक्त शुरू हो चुका है प्रोग्राम सिटी लाइट्स, यानी कि वो प्रोग्राम जिसमें शहर की हलचल से हम करवाते हैं आपको रूबरू। आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका और पूरे एक घंटे यानी पूरे 6 बजे तक आपको बताऊंगी कि दिल्ली एनसीआर में क्या कुछ खास हो रहा है, मौसम का हाल कैसा रहेगा, ट्रैफिक के क्या अपडेट्स है और भी क्या कुछ है जो आपको जानना चाहिए अपनी सिटी के बारे में। तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ और थाम लीजिए मेरा हाथ, निकल पड़िए सफर पर मेरे साथ। वक्त हुआ है 5:03 राइट फ्रॉम द स्टूडियो क्लॉक। दीपिका के साथ आपका ये सफर यहाँ पर शुरू हो चुका है। कुमार सानू की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत से गाने के साथ करते हैं इस शो की शुरुआत और इसके बाद शहर की हलचल से आपको रूबरू करवाने का सिलसिला जो है वो बिल्कुल शुरू होगा।

दिल्ली एनसीआर में इस वक्त मौसम जो है वो काफी सुहाना है, बारिश होने के भी पूरे आसार हैं और हल्की बूंदाबांदी तो आज हुई भी है। मौसम विभाग ने भी संभावना जताई है कि दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में अगले 5 दिनों तक बारिश का ये दौर जो है वो जारी रह सकता है। आज भी बारिश होने के आसार हैं, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। साथ ही साथ रविवार को तो तेज हवा के साथ वर्षा होने की संभावना है।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप दीपिका के साथ हैं। प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे हैं सैटेलाइट्स और दिल्ली शहर के अगर आज मैं ट्रैफिक अपडेट की बात करूं तो ब्रिक्स सम्मेलन की वजह से कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध लागू है, डायवर्जन लागू है। ऐसे में आज थोड़ा संभल कर अपनी यात्रा आपको प्लान करनी होगी। कल के लिए भी ये है, क्या कुछ है

आज की ट्रैफिक अपडेट में चलिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ। 18वें ब्रिक्स लीडर समिट के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने आज कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है ताकि जो वाहन की आवाजाही है उसे कंट्रोल किया जा सके। ये सुबह 9:30 बजे से लागू है और रात के 9 बजे तक लागू रहेगा ताकि वीवीआईपी और अंतर्राष्ट्रीय मेहमान जो है उनकी आवाजाही में कोई मुश्किल ना हो। अब कौन कौन से वो मार्ग हैं जहां पे निकलते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये सम्मेलन जो है भारत मंडपम यानी प्रगति मैदान में हो रहा है, तो ऐसे में सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली और लुटियंस जोन के कई प्रमुख कॉरिडोर्स को कंट्रोल रोड इस वक्त पर घोषित किया गया है। सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, इंडिया गेट, गोल चक्कर, मथुरा रोड और भैरव मार्ग, ये कुछ ऐसे रोड्स हैं जहां पर निर्धारित समय के दौरान वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। कई डायवर्जन पॉइंट्स भी वहां पर तय किए गए हैं। ऐसे में अगर आप कहीं के लिए भी यात्रा प्लान कर रहे हैं और आपको इन रूट से होकर गुजरना पड़ता है तो आप अपनी यात्रा प्लान करने से पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर घर से निकले ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। आपको अगर रूट डाइवर्टेड हो तो आप थोड़ा टाइम आपके पास होगा तो आप तय समय पर पहुंच पाएंगे जहां आपको जाना है। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो आप मेट्रो का इस्तेमाल इस वक्त पर करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें ताकि दिक्कत कम हो। इन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी जो जर्नी है वो स्मूथ हो और साथ ही साथ आपको जहां भी पहुंचना है बिना डिले के आप वहां टाइमली पहुंच सके। फिलहाल दीपिका के साथ बने रहिए इस प्रोग्राम में, ऐसी ही अपडेट्स शहर से जुड़ी आपको मिलती रहेंगी क्योंकि ये प्रोग्राम ही है सिटी लाइट्स।

बॉर्डर फिल्म से इस खूबसूरत से गाने को आपने सुना। वेल, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही ना एक अलग सा सुकून महसूस होता है, और ये मुझे लगता है उन्हीं में से एक ट्रैक है। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप दीपिका के साथ है, प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे हैं सैटेलाइट्स। बातें हो रही हैं क्या कुछ हो रहा है दिल्ली एनसीआर में खास, या क्या कुछ है जो दिल्ली एनसीआर के लोगों को जानना चाहिए। वेल, एक बहुत ही खास चीज जो बहुत जरूरी है खास तौर पर हमारी फीमेल लिसनर्स के लिए, दिल्ली में महिलाओं के लिए ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था, यानी कि जो ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको इजी करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए हैं। असल में महिलाओं को कई बार ऐसा होता है, किसी भी दिक्कत, चाहे वो हम साइबर क्राइम की बात करें या फिर किसी भी और अपराध की बात करें, पर उन्हें ऑनलाइन किस तरीके से कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है, क्या कुछ करना है, उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। ऐसे में क्या होता है कि कई बार वो कंप्लेंट नहीं करवा पाती हैं, या कई बार वो प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि हम इनिशिएट तो करते हैं लेकिन उस प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली महिला आयोग

ऑनलाइन शिकायत और इसको कैसे निवारण किया जाएगा, इस पूरी व्यवस्था को प्रभावी और सरल बनाने के लिए कहा है ताकि महिलाएं आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करवा सके। उन्हें ये भी अपडेट मिलती रहे कि उनकी शिकायत जो उन्होंने दर्ज करवाई थी उस पर क्या प्रोसेस हो रहा है, कितनी वो आगे बढ़ गई है और क्या उसका रिजल्ट निकल के आया है। वेल, अगर ऐसा होता है तो काफी हद तक चीजें आसान हो जाएंगी और होनी भी चाहिए। आज के वक्त में सब कुछ डिजिटल है, ऐसे में ये सुविधा कि कंप्लेंट आसानी से रजिस्टर करवाई जा सके, ये पता चल सके कि कंप्लेंट आपकी कहाँ पर है इस वक्त, यानी कि उस पर कितना काम हो गया है और कितना और होना है, ये सारी अपडेट्स अगर मिलती रहे तो वाकई बहुत अच्छा है।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
6: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
6: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
10: आकाशवाणी FM रेनबो पर आप हैं दीपिका के साथ, प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे हैं सिटी लाइट्स।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर दीपिका के साथ बना हुआ है आपका साथ प्रोग्राम। आप यहां पर सुन रहे हैं सिटी लाइफ। तो जैसा मैंने जिक्र किया था कुछ देर पहले कि ब्रिक्स समिट के चलते कई सारे रूट्स जो है वो इस समय प्रभावित हैं, कई सारे रूट्स डाइवर्टेड हैं।

तो ऐसे में मेट्रो का आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि आपको कोई अनकन्वीनियंस यहां पर दिक्कत, आपको कोई भी इनकन्वीनियंस बिल्कुल भी यहां पर ना हो, इसके लिए आप ऐसा करें। लेकिन अब अगर मेट्रो की मैं बात करूं तो कई सारी ऐसी मेट्रो लाइंस हैं जहां पर मेट्रो सुबह 6 बजे से नहीं बल्कि 7 बजे से शुरू होती है, और ऐसे में ऑफिस या फिर अगर छात्र हैं तो कॉलेज वगैरह जाने में या फिर एग्जाम है कोई तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। पर कल यानी कि रविवार को डीएमआरसी की तरफ से ये घोषणा की गई है कि सभी मेट्रो कॉरिडोर पर सुबह 6 बजे से परिचालन जो है वो शुरू होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वजह से जो यातायात प्रतिबंध है उसके चलते यात्रियों और छात्रों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए ये फैसला लिया गया है। पिंक, मजेंटा और ग्रे लाइन पर जो है वो मेट्रो 7 बजे से परिचालन शुरू होता है, हालांकि रेड, येलो लाइन कई और ब्लू लाइन पर ये 6 बजे के आसपास शुरू हो जाता है। पर कल यानी कि रविवार को सभी मेट्रो कॉरिडोर पर सुबह 6 बजे से मेट्रो शुरू हो जाएंगी, तो ऐसे में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप मेट्रो से ट्रेवल कर सकते हैं और जहां भी आपको जाना है वहां आराम से पहुंच सकते हैं। परेशान होने वाली बिल्कुल कोई बात है ही नहीं।

जी हाँ, जिंदगी में कई बार कोई एक शख्स या फिर कोई एक ख्वाहिश ऐसी होती है कि हमें लगता है अगर ये पूरी हो जाए तो बस फिर तो बाकी सब कुछ हम छोड़ देंगे। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप दीपिका के साथ हैं, प्रोग्राम सिटी लाइट सुन रहे हैं, या यूं कहूं प्रोग्राम सिटी लाइट सुन रहे थे शहर की हलचल से। यहां पर मैंने करवाया आपको रूबरू, और अभी चलिए जल्दी से ये बता देती हूँ कि आने वाले घंटों में आप कौन से प्रोग्राम यहाँ पर सुनने वाले हैं और कौन से हमारे साथी हैं जो आपके साथ बने रहेंगे। तो 6 बजे से आप यहाँ पर सुनेंगे प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। मुझे पता है इस प्रोग्राम का आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि आपके मैसेजेस जो शामिल होते हैं इसमें। गीत गुंजन लेकर आएंगे ये प्रोग्राम 7 बजे से। हिमानी आपके साथ जुड़ेंगी वेस्टर्न म्यूजिक से, सैटरडे सिजलर्स लेकर वो हाजिर होंगी। और 8 बजे से आप थिरकने झूमने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में, जिसमें एक बार फिर से गीत गुंजन आपके साथ जुड़ेंगी। तो यहाँ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर तो बिल्कुल एंटरटेनमेंट जबरदस्त होने वाला है, आप कहीं नहीं जाने वाले, ये तो मुझे पता है। लेकिन हाँ, फिलहाल मेरे जाने का वक्त जरूर हो गया है। इस प्रोग्राम में आपको मुझे इजाजत देनी होगी। जाते जाते वही कहूंगी जो हर बार कहती हूँ, हम सभी यूं ही हंसते हंसाते गाते गुनगुनाते जिंदगी के हर एहसास को गले लगाते आने वाली खुशियों को सजाते और उम्मीदों से हाथ मिलाते रहेंगे, और दोबारा कभी सिर्फ यही मिलेंगे क्योंकि यही अपना ठिकाना है, हमें और कहाँ जाना है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6।

अब आप सुनिए मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत मंडपम में जारी। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में इतर वियतनाम, इथोपिया, मलेशिया के अपने समकक्षों से द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण आज रात 9 बजे तक दिल्ली के 22 स्थानों पर यातायात परिवर्तित और 35 से अधिक मार्गो पर नियंत्रित किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि कल सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा, इन सुविधाओं से बीमारियों के खतरे का समय रहते पता लगाने की क्षमता मजबूत होगी। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहूदी नववर्ष रोश हशाना के अवसर पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यहूदी समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। और महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। आपने सुने मुख्य समाचार, मिलते हैं थोड़ी ही देर में।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ साथियों, समय हो गया है प्रोग्राम आपके फेवरेट प्रोग्राम, जी हाँ, मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूँ आपके साथ गीत कुंजन, और आपको रहना है हमारे साथ, कहीं पे भी नहीं जाना।

जी हाँ साथियों, इधर उधर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप सुन रहे प्रोग्राम ट्रिपल एम यानी कि मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपके साथ गीत गुंजन, और अभी तो मैंने आपसे सवाल भी नहीं पूछा, ना ही आपको फोन नंबर बताया, और इतने सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए, क्या बात है। तो चलिए झट से बिना देर के मैं आपसे सवाल आज का पूछ ही लेती हूँ। मेरा ये कहना है कि इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सभी जो है ना, कई बार ओवरथिंकिंग के पैटर्न में फंस जाते हैं, यानी एक ही बात को बार बार सोचते रहते उठते बैठते, है ना। तो हम कई बार क्या चाहते हैं, कोई आए और हमारी हेल्प कर दे, है ना, और हम ये चाहते हैं कि हम किसी स्ट्रेस या एंजाइटी से बाहर निकलें बड़ी आसानी से, लेकिन कोई आए और हमारी हेल्प करे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना रिमोट अपने पास रखें, टीवी का नहीं अपना खुद का, यानी कि खुद को चुटकी बजाते ही ठीक कर लें जो आपका ओवरथिंकिंग चल रही है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, या फिर आपकी कोई भी सिचुएशन है, उससे आप खुद निकल आए बाहर, यानी कि करनी है खुद की हेल्प। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं, या आप क्या कहेंगे खुद को, या क्या करेंगे कि भाई जो आपकी रुकी रुकी सी जिंदगी है ना, ये झट से चल पड़े। अरे नंबर तो बता दूं, नंबर है 9868107070, 9868107070।

जी हाँ, बस भी करिए, इतने सारे मैसेजेस, माय गॉड, अभी तो प्रोग्राम एस सच मुझे ऐसा लगता है शुरू हो चुका है। तो चलिए फिर मैं भी देर नहीं करती हूँ। पहला मैसेज आया रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, और इनका ये कहना है कि इन्हें गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगी थैंक यू। एक मैसेज आया है रजत का मयूर विहार फेज वन से, इनका ये कहना है कि जब भी मुझे ओवर थिंकिंग या टायर्डनेस होती है तो मैं सोलो ट्रिप पर निकल जाता हूँ, क्या बात है। ये मैसेज आया नरेंद्र सोनी देवगढ़ पटियाला से, इनका कहना है शुभ संध्या गीत गुंजन जी। तो धन्यवाद, आपको भी शुभ संध्या। और इनका ये कहना है कि अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए केवल और केवल एफएम रेनबो सुनता हूँ, क्या बात है। ये बोलकर तो आपने हमें खुश कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ये मैसेज है प्रदीप सलूजा का जनकपुरी से, इनका कहना है कि गीत गुंजन जी आप कैसे हो। तो मैं बता दूंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपके मैसेजेस पढ़कर तो मुझे और भी अच्छा लगता है। ये मैसेज आया है हमारे पास किशन वंजवानी, नीलम स्वाति और किशोर रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, इनका कहना है कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं या सोचते हैं कि दिल और दिमाग को संतुलित करने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए ताकि उसका नतीजा पॉजिटिव हो, बिल्कुल। और ये मैसेज आया है आदिल कमर का, इन्होंने मेरा नाम लिखा है दीप गुंजन, तो मैं बता दूं मेरा नाम गीत गुंजन है, कोई बात नहीं, दीप गुंजन भी अच्छा नाम है। और ये मैसेज है मेरे पास हीरामणि वर्मा का, भाटापारा छत्तीसगढ़ से, इनका कहना

मैं यदि मेरे पास कोई जादुई रिमोट हो जाए तो मैं खुद के अंदर के तनाव को दूर करना चाहूंगा और एक अच्छा सा म्यूजिक हो जिसे बार बार सुनता रहे। तो जी हाँ, म्यूजिक के लिए दो तीन लोगों ने कह दिया कि म्यूजिक वो सुनेंगे। और ये मैसेज आया जावेद आलम मोहम्मद जयान का, जयपुर से। इनका कहना है कि जब मैं टेंशन में होता हूं तो मैं अपने मन का काम करता हूं, क्या बात है, जो मेरे दिल को पसंद हो और मैं सॉन्ग सुनता हूं, क्या बात है। ये कहना है, इनका कहना है मूड फ्रेश और दिमाग भी फ्रेश। तो क्या बात है, आप लोग सॉन्ग सुनकर अपने आप को ठीक करते हैं, यानी आप सब एफएम से इतना ज्यादा जुड़े हुए, हमें जानकर बहुत अच्छा लगा। जी हमारा नंबर है 9868107070। और मैंने आज आपसे ये पूछा था कि अगर आप किसी ओवर थिंकिंग के पैटर्न में हैं या परेशान हैं तो ऐसी कौन सी चीज आप झट से करते हैं जिससे आप हो जाते हैं ठीक, यानी खुद की आप क्या हेल्प करते हैं। तो जल्दी से हमसे करिए अपनी बातें शेयर।

जी हाँ साथियों, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी रेनबो पर। और मैंने आपसे ये पूछा था कि कैसे आप खुद की हेल्प कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रेस भरी सिचुएशन से कैसे खुद को निकाल सकते हैं, ओवर पैटर्न्स ओवर थिंकिंग से दूर कर सकते हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस आ गए, इतने सारे आ गए कि दो दो शिफ्ट्स में मैं लूँगी, नो वरीज़। चलिए शुरू करते हैं झट से। जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से लिखती है, मुझे थॉट प्रोसेस से बाहर निकालना हो तो एक ही इलाज है, 102.6 FM सुनो और आसानी से घर के काम कर लो और सो भी जाओ, एंटरटेनमेंट होता रहता है और बाकी के काम भी। वेरी गुड। और खुद को ओवरथिंकिंग से बाहर निकालने का आसान तरीका, खुद को व्यस्त रखो जिससे सोचने का वक्त नहीं होगा। वेरी गुड। ये लिखा अनिल शर्मा सरिता विहार से, इससे ओवरथिंकिंग आने पर दिमाग से बाहर निकलने में सफल होंगे। बहुत अच्छा आपने लिखा है कि खुद को बिजी रखो तो आप ओवरथिंकिंग के पैटर्न में आएंगे ही नहीं। वेरी गुड। और जी आपने लिखा है सादर प्रणाम, किसने लिखा, सुदर्शन मुखी अनीता मुखी, तो आपको भी नमस्कार। और कन्हैया लाल रीता देवी ने प्रोग्राम की तारीफ की तो मैं आपको कहूंगी थैंक यू। और ये मैसेज है यश शिंदे का मुंबई से, इनका कहना है कि बहना गीत कुंजन जी नमस्ते, तो नमस्ते, शुभ संध्या आपको भी। जब हमारे मन में बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और हमें किसी गाइडेंस की जरूरत होती है। जी हाँ बिल्कुल होती है। तो अगर खुद को सकारात्मक विचारों में डूबे रखना है और बाहर निकलना है तो इसका सबसे बेस्ट उपाय है आकाशवाणी एफ एम रेनबो को सुनो और दोस्तों से बातें करो जैसा कि आप कर रहे हो। और एक बात, मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये किसने लिखा है, सुकाल बाला कुछ बिहार से, वेस्ट बंगाल, मैं तो एफएम रेनबो सुनता हूँ, बहुत अच्छा करते हैं आप अच्छा लग रहा है। और ये है पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, इनका कहना है कि मुझे कुछ समय अकेला में शांत बैठ जाता हूँ, अच्छे विचारों को स्वीकार करता हूँ, नेगेटिव विचार और ओवरथिंकिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। क्या बात है, फोकस आपको शिफ्ट करना है। और अच्छा गीत संगीत सुनता हूँ, इससे ओवरथिंकिंग से छुटकारा मिल जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और काफ़ी लोगों ने कहा कि वो एफएम सुनते हैं तो फिर हम ज़्यादा बातचीत ना करते हुए गानों पर फोकस करें, हम भी अपना थोड़ा सा फोकस शिफ्ट कर लेते हैं।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे, प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ साथियों, आप सुन रहे प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, और चलिए झट से मैं आपके मैसेजेस ले लेती हूँ। विजेंद्र घटोल का मैसेज आया है कि इनको गाने बहुत अच्छे लग रहे हो, खासतौर पर रंग दिन इनको गाना बहुत अच्छा लगा, कैलाश खेर का। और इनका कहना है कि मैं फिल्म रेनबो सुनता हूँ सिर्फ। और ये मैसेज आया हमारे पास प्रदीप सलूजा का, जी आंखें बंद करके वाहे गुरु जी का सिमरन करो तो मेरी सारी टेंशन भाग जाती है। ये मैसेज है मोहम्मद सईद अब्बासी का बुलंदशहर से। जिंदगी एक रंग नहीं अनगिनत रंगों का सुंदर संगम है, हर पल को महसूस करें, हर अनुभव को अपनाएं, और जिनसे प्रेम है उन्हें हमेशा अपने दिल के करीब रखें, क्योंकि वही जिंदगी के रंगों को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये मैसेज आया है धीरेन का दिल्ली से। इनका कहना है कि एफएम रेडियो सुनकर दिल को सुकून मिलता है, शाम की चाय और कान में ईयरफोन और दिल में ढेर सारा प्यार। क्या बात है, आपने तो पूरा माहौल बना दिया जी, चाय का नाम लेकर और एफएम का नाम लेकर, क्या बात है। और मुझे ज़्यादा तनाव होता है तो मैं घूमने चले जाता हूँ और साथ में एफएम लगा लेता हूँ, क्या बात है। ऋषिकेश से मैसेज आया है पुनीत का, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एफएम का साथ नहीं छोड़ते हैं, आकाशवाणी रेनबो का साथ नहीं छोड़ते हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि आप बिल्कुल हमारे साथ रहें। ढेर सारे मैसेजेस हैं, चलिए मैं लेती हूँ जल्दी से। अतीत को बदला जा सकता नहीं, वर्तमान से बच सकते नहीं, भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान उज्जवल कर सकते हैं। बुलंदशहर से मैसेज आया है। और ये मैसेज आया है, एक पेपर पर आप जो भी ओवरथिंकिंग कर रहे हैं उसको लिखकर जला दें और बहा दें, ये भी इफ़ेक्टिव तरीका है। इनको ये गाना अच्छा लगा, दीवानों को पता है जी, थैंक यू हम आपको कहेंगे। और डॉली का मैसेज आया ये वाला, मैं सोच रही जल्दी से गाना प्ले कर लूँ लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे मैसेजेस। ये मैसेज है सनी कपूर का जर्मनी से, क्या बात है। इनका कहना है मुझे कभी भी टेंशन नहीं होती क्योंकि मैं बहुत वॉक करता हूँ और साथ में रेनबो भी सुनता हूँ, तो मैं आपको कहूँगी थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।

0: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
5: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
4: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
5: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
7: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ envelopes हैं। आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो।
8: मैम, मेरे वाले में तो HRD से related अलग अलग messages हैं।
9: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
10: मेरे वाले में needle या injection शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है। और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
7: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
11: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, दिल डूब चुका है आपके मैसेजेस में। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स, मैं हूँ आपके साथ गीत कुंचन। और चलिए मैं बिना देर के आपके मैसेजेस ले लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। ये मैसेज आया है मंजू भाटिया का द्वारका दिल्ली से। क्या बात है, इनका ये कहना है कि आई ऑलवेज लिसन टू रेडियो व्हेन आई एम वर्किंग इन किचन और डूइंग एनी अदर वर्क विच कीप्स मी इन प्रेजेंट मोमेंट एंड आई डू मेडिटेशन इन मॉर्निंग विच प्रिवेंट्स मी फ्रॉम एंजाइटी। क्या बात है मंजू जी, बिल्कुल अगर आप प्रेजेंट में रहें तो काफ़ी एंजाइटी वैसे ही दूर हो जाती है। और इसके लिए आप बहुत अच्छा करती हैं कि आप रेडियो सुनकर काम करती हैं, वेरी गुड। ये मैसेज आया हमारे पास किशन वंजानी नीलम स्वाति रेलवे कॉलोनी से। इनका ये कहना है कि इनको गाने बहुत पसंद आ रहे हैं तो मैं आपको

थैंक यू, और इनका ये कहना है कि जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हम म्यूजिक थेरेपी का सहारा लेते हैं, क्योंकि संगीत से अच्छा और कुछ नहीं जो कि मन को शांत कर सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने, म्यूजिक थेरेपी का सहारा बिल्कुल लेना चाहिए। और ये है तीज पोला की, ये बधाइयाँ दे रहे हैं। और ये कहाँ से मैसेज किया इन्होंने, भिलाई से इन्होंने मैसेज किया, बालोद से। और ये मैसेज आया है मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप का। और ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा प्रोग्राम आप पूरा परिवार आपका प्रोग्राम सुन रहा है और हमें बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम लग रहा है, तो मैं आपको कहूँगी थैंक यू। और ये मैसेज है भुवनेश का, अशोक विहार से। और इनका ये कहना है कि आज के टॉपिक के लिए मैं यही कहूँगा कि जब भी मैं टेंशन में होता हूँ तो आई ऑलवेज लिसन टू ट्रिपल एम शो एंड एट होम आई प्ले माई पियानो। क्या बात है भुवनेश जी, और दिस वे आई बिकम टेंशन फ्री। अच्छा, इन्होंने मुझसे पूछा कि आप भी बताइए आप क्या करती हैं टेंशन फ्री होने के लिए। जी हाँ, मैं गाने सुनती हूँ बिल्कुल आप लोगों की तरह, मैं भी बिल्कुल आप लोगों की तरह हूँ और मुझे भी गाना सुनना बहुत पसंद है। ये मैसेज आया है भेरूलाल वाकतरिया का, धाकड़ उन्हें जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। इनका कहना है कि दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में कुछ ना कुछ टेंशन आ सकती है, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। ने गाने बहुत पसंद आ रहे, क्या बात, आज मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स सॉन्ग के लिए मिल रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगी थैंक यू। मैं और ढूंढ ढूंढ के लाऊंगी आपके लिए अच्छे गाने, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ सॉन्ग्स, मुझे भी अच्छा लगता है और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से जब भी मैं आपके साथ प्रोग्राम करती हूँ तो मेरी रिचार्जिंग हो जाती है, ये मेरा इलाज है एंजाइटी से निकलने का। और गुड्डू धाकड़ बेड़ावन गांव से कह रहे हैं कि मेरी दुकान और खेती दोनों हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है तो खेत पर चला जाता हूँ और वहाँ जाके सब भूल जाता हूँ। क्या बात है, इतने सारे मैसेजेस अभी भी हैं। इनका क्या नाम, भी खेतों में घूमने चले जाते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, गाना सुनते हैं और डांस करते हैं और कुछ अच्छा मज़ेदार खा लेते हैं। क्या बात है, जी हाँ, खाने से भी नो डाउट सारी टेंशन झटपट दूर हो जाती है। और ये मैसेज भेजा है दिव्या मौर्य ने, कस्बा जायसगांव नगदियापुर जिला मेठी यूपी से। और आपने भी लिखा है कि आपको गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैं फिर से आप सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलूंगी। और हम आपके करीब ही रहेंगे, बिल्कुल आपके पास हैं, पास आने लगे हैं। और अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी थोड़ी देर बाद, एक घंटे बाद फिर मिलूंगी। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
0: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
8: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
9: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
10: Welcome back. You're with us on Akashvani Rainbow. And the track that I played out for you just before I took that break was Aurora with Ordinary World. Ordinary world it indeed is. But Saturday night, there's something different about Saturday nights. Something special. Something exotic. Call me.

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

अब समय है मुख्य समाचारों का। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत मंडपम में जारी। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन भाषण में कहा, नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन से इतर वियतनाम, इथोपिया, मलेशिया के अपने समकक्षों से द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी मुलाकात की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज भारत और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की साझेदारी को और गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण आज रात 9 बजे तक दिल्ली के 22 स्थानों पर यातायात परिवर्तित और 35 से अधिक मार्गों पर नियंत्रित किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि कल सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा, इन सुविधाओं से बीमारियों के खतरे का समय रहते पता लगाने की क्षमता मजबूत होगी। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग यहूदी समुदाय को यहूदी नववर्ष रोश हशनाह की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहूदी नववर्ष रोश हशाना के अवसर पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को यहूदी समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देश

देशवासियों को शुभकामनाएं दी। और महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। आपने सुने मुख्य समाचार, मिलते हैं थोड़ी ही देर में।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है म्यूजिक मस्ती।

0: दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow.

हे गर्ल्स, आदमी मैं अच्छा हूँ, दिल का भी सच्चा हूँ, बट बी यू टी बट आई एम अ

0: की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय

0: भी चूज की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: वेलकम आफ्टर द ब्रेक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती रेनबो इंडिया 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ गीत कुंजन।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: फार्म टू सिटी।

नमस्कार दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं। सुनिए इस वक्त की अहम खबरें। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत मंडपम में जारी। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन भाषण में कहा, नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक में पुष्टि की गई कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन से इतर वियतनाम, इथियोपिया, मलेशिया के अपने समकक्षों से द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री ने अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज भारत और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की साझेदारी को और गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण आज रात 9 बजे तक दिल्ली के 22 स्थानों पर यातायात परिवर्तित और 35 से अधिक मार्गों पर नियंत्रित किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि कल सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा, इन सुविधाओं से बीमारियों के खतरे का समय रहते पता लगाने की क्षमता मजबूत होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इसराइल की राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग यहूदी समुदाय को यहूदी नववर्ष रोश हशनाह की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहूदी नववर्ष रोश हशाना के अवसर पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यहूदी समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। और महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार, बनी रहिए हमारे साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। आप हैं एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में, क्योंकि आपकी याद आती रहेगी।

0: एक साथी जो मोहब्बत के सफर में साथ साथ चल सके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में। एहसास आपके, अल्फाज हमारे, नगमे सदाबहार।

दुनिया में खूबसूरत, सबसे खूबसूरत अपना महबूब, मानो कायनात की सारी खूबसूरती एक चेहरे में सिमट आई हो।

यादों के आईने में संवरते रहिए। सफर दिल से दिल तक का है और इस खूबसूरत सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त निवेदा।

0: छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वहां जल्द हाजिर होते हैं।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में। अगर तलाश करूँ कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आँखें हमारी कहाँ से लाएगा।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: और दोस्तों, आज यादों का कारवां यहीं थामते हैं। मिलती हूँ आपसे 1 घंटे बाद रंग महफिल लेकर। आप रहिएगा ना साथ हमारे।

0: Starship with We Built This City. And if we can consider Akashvani Rainbow to be a city, well, we truly built it together on the foundation of love, and rock and roll can't be far behind.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: You're with us on Akashvani Rainbow and keeping the groove moving, here is Cliff Richard.

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा

0: सारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: You're with us on Akashvani Rainbow. And it's a Saturday night, and the show is called In the Groove.

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
4: Coming to you live from the studios of Akashwani Rainbow on this extended weekend night. The show is called In the Groove, and coming up next for your dancing pleasure, Def Leppard. Oh, it was night with me.

नमस्कार दोस्तों, रात के 11 बज चुके हैं। सुनिए इस वक्त की अहम खबरें। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया। बहुपक्षवाद मजबूत बनाने और व्यापक सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान किया गया है। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र अपनाया जाना भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णय और परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई से पाटना होगा। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष जू चियाई से भारत और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की साझेदारी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशभर की लखपति दीदियों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। भारत ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दुनिया की सबसे लंबी स्टील स्लैग सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए वांछित आरोपी अमृतपाल सिंह को मालदीव से भारत प्रत्यर्पित कराया। और अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में देर रात मौजूदा चैंपियन आर्यना सबलिंका का सामना एलिना रिबाकिना से होगा। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हुजूर आप कभी

बात उतनी भर नहीं होती जितनी जुबान से कही जाती है। कुछ बातें तो निगाहें भी कहती हैं, जो सीधे दिल में उतरती हैं। झूठ की गुंजाइश नहीं है,

मोहब्बत है तो ख्वाब है, उम्मीद है, इंतजार है, जिंदगी खूबसूरत है।

0: एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: कोयल सी तेरी बोली, कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु

0: याद।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ बिल्कुल सही है आप FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। उसकी आंखों ने खुदा जाने क्या जादू किया कि तबीयत मेरी माइल कभी ऐसी तो न थी।

जाकर भी कहां जाता है कोई, पाकर मन का एकांत कोना यादों में लौट आता है। वक्त कहीं किसी मोड़ पर ठहर जाता है किसी का नाम लेकर, पर एक तड़प, एक एहसास छोड़ जाता है।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

यहाँ बिल्कुल सही हैं आप। दिल्ली एनसीआर में 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर और देश के बाकी हिस्सों में अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। और मैं नविदा हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में।

तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है। अजब है रात से आंखों का आलम, ये दरिया रात भर चढ़ता रहा है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: और दोस्तों अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल से दिल मिलाते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

12 बजे हैं। आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया। बहुपक्षवाद मजबूत बनाने और व्यापक सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति पी चिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोजन के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए गणमान्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का भ्रमण किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के कारण यातायात में होने वाले रुकावटों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। देश में रक्तदान के क्षेत्र में हरियाणा लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा। वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य में 5,89,000 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और कुलगाम समेत 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये अभियान पाकिस्तान स्थित संचालकों और सीमा पार आतंकी योजनाओं के मामले में चलाया गया। मौसम विभाग ने गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल्स में देर रात मौजूदा चैंपियन आर्यना सबलेंका का सामना एलेना रिपकिना से होगा। और महिला एशिया कप क्रिकेट में खिताबी मुकाबले में भारत का सामना आज श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 12:03 हुए हैं दोस्तों, आइए अब सुनते हैं जीरो आर शो। प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म नाखुदा से, और आवाजें हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं महल फिल्म का गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म तेरे मेरे सपने का ये खूबसूरत सा गीत।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो पर इस समय आप सुन रहे हैं जीरो आर शो और मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत। फिल्म का नाम है नैना और इसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

नैना फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं आमने सामने फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आप सुन रहे हैं जीरो आर शो आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर, और आइए अब आपको सुनवाते हैं किस्मत फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले ने।

किस्मत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में, और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम है बहारें फिर भी आएंगी।

और दोस्तों जीरो आर शो के आखिर में आपको सुनाते हैं मुकेश का गाया रजनीगंधा फिल्म का गीत, और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की।

एक बजे हैं आकाशवाणी रेनबो पर। आइए सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया। बहुपक्षवाद मजबूत बनाने और व्यापक सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए गणमान्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का भ्रमण किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के कारण यातायात में होने वाली रुकावटों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बीकेसी स्थित भारत डायमंड बोर्ड्स में आयोजित जेईपीसी पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे और लाल बागचा राजा के दर्शन करेंगे। देश में रक्तदान के क्षेत्र में हरियाणा लगातार 3रे वर्ष पहले स्थान पर रहा। वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य में 5,89,000 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और कुलगाम समेत 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान पाकिस्तान स्थित संचालकों और सीमा पार आतंकी योजनाओं के मामले में चलाया गया। और अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में अब से थोड़ी देर में पिछले विजेता आरना सबालेंका का सामना एरिना रिबाकिंग से होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:02 और 50 सेकंड हुए हैं दोस्तों। अब आप सुनेंगे प्रोग्राम सुहानी रात। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया और ये प्रोग्राम में आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंडो पर रात 9 बजे।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही

आकाशवाणी रेनबो एफएम चैनल है। आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया। बहुपक्षवाद मजबूत बनाने और व्यापक सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में

नीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए गणमान्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का भ्रमण किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के कारण यातायात में होने वाली रुकावटों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बीके से स्थित भारत डायमंड बोर्ड से आयोजित जीजेईपीसी पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे और लाल बागचा राजा के दर्शन करेंगे। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में भारत का सामना आज श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। भारतीय समय अनुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं नॉन स्टॉप म्यूजिक। प्रोग्राम का नाम है भुलाए ना बने। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया। बहुपक्षवाद मजबूत बनाने और व्यापक सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए गणमान्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का भ्रमण किया। दिल्ली मेट्रो रेल

निगम ने बताया कि 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के कारण यातायात में होने वाली रुकावटों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बीकेसी स्थित भारत डायमंड बोर्स में आयोजित जीजेईपीसी पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे और लालबागचा राजा के दर्शन करेंगे। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान। अमेरिकी ओपन टेनिस में अमेरिका के क्रिश्चियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील्स कूप्सकी ने पुरुष युगल का खिताब जीत लिया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 20-20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। भारतीय समय अनुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया। बहुपक्षवाद मजबूत बनाने और व्यापक सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रिभोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के कारण यातायात में होने वाली रुकावटों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे तक शुरू हो जाएंगी। नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई। सुरक्षा बलों द्वारा अब तक 13,700 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। वियतनाम के फान थिएट में आयोजित स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में भारत के एसडी प्रज्वल देव ने फ्रांस के

टेंटिन बिटुन कॉजमिन के साथ मिलकर अपना दूसरा एटीपी टेनिस चैलेंजर युगल खिताब जीत लिया है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। भारतीय समय अनुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया। बहुपक्षवाद मजबूत बनाने और व्यापक सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण यातायात में होने वाली रुकावटों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए सभी लाइनों पर मेट्रो सेवा सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पावन अवसर लोगों को इन मूल्यों को मजबूत बनाने और सौहार्दपूर्ण विश्व के निर्माण में प्रेरित करेगा। नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। अब तक 13,700 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। वियतनाम के फांथिएट में आयोजित स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में भारत के एसडी प्रज्वल देव ने फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कॉस्मिन के साथ मिलकर अपना दूसरा एटीपी टेनिस चैलेंजर युगल खिताब जीत लिया है। और भारत तथा अफगानिस्तान के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों के श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। भारतीय समय अनुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।

भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे निवासी एक टक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगें उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।